किसी का कैजुअल सवाल मुझे तो सोच में ही डाल दिया यार। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वडकम, अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन जुड़ गई है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और किसी ने मुझे ऐसे ही कैजुअली पूछा कि यार लाइफ में क्या एक्साइटिंग चल रहा है बताओ जरा, एंड समटाइम्स आपका आंसर होता है नहीं, कुछ भी नहीं, एंड यू फील दैट ओ माई गॉड लाइफ कितनी बोरिंग है हमारी। नो हॉलीडेज बुक्स, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, नो ड्रामेटिक अचीवमेंट, बस आपका वही रूटीन, ऑफिस, घर, बच्चे, एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ। बट ये मैं सोच रही थी कि हमने नॉर्मल को इतना बोरिंग वर्ड क्यों दे दिया है, है ना, क्यों बना दिया। अ डे वेयर एवरीवन यू लव इज ओके, एक ऐसा दिन जहाँ आप अपना काम कर रहे हो, एक ऐसा दिन जहाँ पर बिजी रहना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, यानी आपके पास काम है और आप फिट हो, आप हेल्दी हो वो काम करने के लिए, एक ऐसा दिन जहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ में सुकून से एक डिनर कर पा रहे हो, विच शुड बी कंसिडर्ड एक्चुअली अ प्रीटी गुड डे रादर देन जस्ट अ बोरिंग नॉर्मल रूटीन डे, है ना। तो बस हर दिन को मेमोरेबल बनाने का प्रेशर होना ही नहीं चाहिए ना, कि हर आपकी जिंदगी का हर मोड एक्साइटिंग होना चाहिए। कभी कभार नॉर्मल इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो आज इस मंडे मॉर्निंग के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि मंडे को तो हमने इतना बदनाम करके रखा है, बोरिंग सा, डल सा, लेकिन कभी कभार डल, बोरिंग, नॉर्मल, ये सब भी अपने आप में ब्लेसिंग है। माइक से दिल तक आप फ्री हैं आपके साथ, और दिन की शुरुआत करते हुए दिस लवली मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। जग लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
6: Who that?
7: जाहिर।
6: जाहिर? जाहिर हूँ।
7: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
6: खटखट, who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मुझे बताओ यार, बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जब आप ले जाते हो, छोटे जो होते हैं ना चिंटू से, तब आपको भी बहुत दिल में ऐसे धक धक होता है ना कि यार कैसे? मेरे ख्याल से ना बच्चों से ज्यादा प्रिपरेशन ना पेरेंट्स की होती है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड वेल, टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन, सिद्रा मेडिसिन अब लॉन्च किया है एक न्यू सर्विस जिसे कहते हैं पीडियाट्रिक प्राइवेट होम विजिट्स, वेलनेस एंड वैक्सीनेशन. हाँ जी, जहाँ एलिजिबल चिल्ड्रन को सर्टन रूटीन पीडियाट्रिक केयर घर पर ही मिल सकती है. हाउ कन्वीनियंट इज दैट? एंड इट्स नॉट ओनली वैक्सीनेशन, सिद्रास पीडियाट्रिक टीम कैन डू रूटीन वेलनेस assessments, growth and developmental monitoring, feeding guidance or parents education and scheduled childhood vaccinations depending on the child's need. Ab ek important clarification ye hai, ye automatically Qatar ke har child ke liye open home call service nahi hai. It's currently eligible for Sidra medicine patients and every request pehle clinical review se guzarta hai to make sure ke home care is safe and appropriate. Availability bhi operational capacity par depend karegi and this is for routine care, not emergency or urgent medical conditions. So, agar aapka child Sidra ka patient hai ya aap janna chahte hai ki your child is eligible or not, you can check directly with Sidra on 400-333-333. I repeat, Sidra ka number hai 400-333-333 par aap check kar sakte hai if your child is eligible for this routine home check. Okay, and I quite like the idea though, healthcare ko family ke liye थोड़ा मोर कन्वीनियंट बनाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वेदर इट्स मेडिकली अप्रोप्रिएट. बस एक प्रॉब्लम सिद्रा सॉल्व नहीं कर पा सकता, दैट इज वैक्सीन घर पे हो या हॉस्पिटल में, इंजेक्शन देकर मुझे नहीं लगवाना, रोना धोना बच्चों का वो टेंट्रम शो करने वाला सीन. आई एम श्योर हर पेरेंट इससे गुजरता ही है ना. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

क्या बात है यार, एक नहीं दो दो मेडल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन के साथ हैं आप ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और एशियन गेम्स में टीम कतर की मेडल टाली तो हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, है ना। और कल लेकिन एथलेटिक ट्रैक से एक नहीं दो दो मेडल्स आए हैं, एक ब्रॉन्ज एंड इनफैक्ट एक गोल्ड मेडल भी आया है। यस, सबसे पहले बासिम हमीदा जिन्होंने जीता है गोल्ड इन द मेंस 400 मीटर हर्डल्स एट द आईची नगोया एशियन गेम्स। और रेस पता है कितनी क्लोज रही है, आई टेल यू व्हाट। बासिम फिनिश्ड इन 47.82 seconds, while Japan के 17 साल के ताइजू गोटो finished in 47.93। मतलब gold और silver के बीच सिर्फ difference था 0.11 second। We can't even imagine this, right? बासिम के लिए ये win और special इसलिए भी है क्योंकि जो previous Asian Games था in Hangzhou, इस event में उन्होंने silver जीता था। So this time silver से officially upgrade हुए हैं ये Asian Games gold पर, and that's an amazing feat, I would say। और कतर के सेकेंड मेडल के बारे में बात करते हैं जो जीता है 22 ईयर ओल्ड जकरिया इब्राहिम ने, और वो भी मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में। और ये जो था उनका एशियन गेम में डेब्यू था, और इसमें डेब्यू गेम में ही वो एक मेडल जीत कर आए हैं। वेल, इन दोनों मेडल्स के बाद अगर टीम कतर के ओवरऑल टैली के बारे में बात करें तो अब 7 मेडल है कतर के पास, जहां 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, एंड देयर इज 2 ब्रॉन्ज मेडल एज वेल। एंड मुझे बासिम की स्टोरी में एक चीज पर्टिकुलरली अच्छी ये कि पिछली बार सेकेंड प्लेस थे एंड इस बार फर्स्ट प्लेस। क्या बात है, कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब हर बार कुछ नया अचीव करना नहीं होता है, सेम स्टेज पर वापस आकर एक स्टेप और ऊपर जाना भी होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम कतर। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

देखो एज अ पेरेंट्स ना, हर कोई बहुत सारी चीजें सोचता है, बहुत सारे फैक्टर्स सोचता है जब अपने बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज करने की बात आती है। जैसे कोर्स फीस, कैंपस, करियर अपॉर्चुनिटीज एंड सो मेनी थिंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और एक चीज जो स्पेशली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में चेक करनी चाहिए वो है इज द प्रोग्राम इंटरनेशनली एक्रेडिटेड। यस, और इसीलिए UDST की ये अपडेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस टेक्नोलॉजी के 6 प्रोग्राम्स को मिली है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फ्रॉम ABET, विच इज US बेस्ड organization that evaluates engineering, computing and technology programs against established quality standards. Ab isme information system hai, information technology hai, chemical, electrical aur mechanical engineering ke programs hai, plus mechanical engineering technology diploma included bhi hai. Ab accreditation ka simple matlab kya hota hai, main aapko batau. Sirf university ka naam nahi, these specific programs were independently evaluated, including inka curriculum, faculty, student outcomes, facilities and continuous improvement. So parents aur students ke liye ye kafi useful takeaway hai ki university shortlist karte waqt sirf kaun sa course hai ye mat poochiye, kahin par bhi ho, is this particular program accredited? Ye bahut zaruri hai. And jaise maine bataya hai, Qatar mein rehte hue UDST ek कॉलेज है जो बहुत से बच्चे, देसी बच्चे जो है वो ऑप्ट करते हैं, एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry, bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन इन दिस जॉनर। एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
6: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा,
10: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Well, my friends, looks like my weekend is going to be funny. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड वीकेंड पर. जब सबसे बड़ा सवाल मेरा होता है ना कि यार ओटीटी पर क्या देखें, आई एम श्योर ये सवाल आपका भी होता होगा.
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है.
2: फ्रेशअप या फ्रेशअप, एकदम नया आया है.
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: पहले तो हम बात करेंगे कुछ नए की नहीं, कुछ पुराने की. यानी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मैं बात कर रही थी चुंबक पार्ट वन के बारे में. एक ऐसा सीरीज जो बहुत ही ज्यादा फनी है ना. फनी का भी एक ये होता है, सबका फनी और कॉमेडी ना अलग रहता है, सेंस ऑफ ह्यूमर. सो अगर आप उस कैटेगरी में हो जहां पर आपको सारा भाई पसंद था, खिचड़ी पसंद था, देन दिस चुंबक इज डेफिनेटली फॉर यू. बिकॉज वही मेकर्स ने बनाया है एंड स्टार कास्ट इज स्टेलर. आई शुड से दैट बिकॉज देवेन भोजानी, नीना गुप्ता, सुमित व्यास, सुमित राघवन, अर्जुन बिजलानी एंड सो मेनी ग्रेट एक्टर्स. और ये एक चुंबक कॉलोनी के बारे में जहां पर ये सारे नेबर्स एक दूसरे की जिंदगी में इतने घुसे रहते हैं एंड इट्स हार्डकोर कॉमेडी आई वुड से. सो ये जो है ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और इसका पार्ट टू जो है वो आ गया है. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि उसके आठ एपिसोड्स वो आ गए हैं. 15-20 मिनट के एपिसोड होते हैं, वेरी इजी टू वॉच. कॉमेडी और एक है जो प्राइम पे है, वो है दोपहिया सीजन टू. अगर आपने सीजन वन देखा है जिसमें गजराज राव, रेणुका शाहने, स्पर्श श्रीवास्तव एंड भुवन अरोरा है, वेरी गुड परफॉर्मेंस और बड़ा ही मजे का ये भी है सीरीज जहां पर एक गांव में है और गांव की पूरी कहानी है. इट्स स्वीट, ठीक है. फैमिली कंटेंट के बारे में आते हैं, इमोशनल कंटेंट थोड़ा, जहां ओ माई डॉग नेटफ्लिक्स पर आई है, जहां एक दिस इज पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म बाय द वे. और एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मिसिंग डॉग को ढूंढ रहा होता है और वो डॉग भी अपने मिसिंग ओनर को ढूंढ रहा होता है. सो बेसिकली एनिमल लवर्स जो है उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा. अब फिर से आते हैं थोड़ा सा कॉमेडी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कॉमेडी ड्रामा. बकायती सीजन टू ये भी Z5 पर आ चुका है, जहां कटारिया फैमिली इज बैक विद मनी प्रॉब्लम्स है इनके पास, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कलेश है फैमिली के, एंड आई थिंक सो एवरीवन मिडिल क्लास जो बिलोंग करते हैं दे विल ऑल्सो रिलेट टू इट कि यार ऐसे किरदार कोई ना कोई आप अपने फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे. तो बहुत कुछ हो गया यार, कॉमेडी हो गया, फैमिली ड्रामा हो गया, इमोशनल कंटेंट हो गया. बेसिकली आई फील दिस वीकेंड वॉच लिस्ट इज यू रेटेड. नहीं तो क्या होता है ना कि जनरली ओटीटी पर अमूमन बहुत ज्यादा ए रेटेड कंटेंट आता है, फैमिली के साथ बैठकर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो ये हफ्ते थोड़ी सॉर्ट हो गई है. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Kabana. Burka, burka. La fiat pa la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही है, हाँ मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो
3: हाँ विनीत जी मजा है, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
6: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू so much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
7: Abu Sidra Mall mein shopping karo और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
8: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
7: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए।
8: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256 GB।
7: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफेल लो और ड्राइव द ड्रीम।
9: खट खट
10: पूरे
9: बनता
10: बनता हूँ।
9: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
10: खट खट हू दैट
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

अच्छा बताइए कि हम जब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो वी रीड इट, वी सी इट, बट व्हाट इफ यू कुड फील इट? हाँ, हिस्ट्री को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? किसी पुरानी फोटोग्राफ को देखकर, एक सेंचुरीज ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़कर, किसी हिस्टोरिक मैप के डिटेल्स, टाइनी डिटेल्स को नोटिस करके। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर आप देख नहीं सकते हो या सुन नहीं सकते, तो वो हिस्ट्री आप तक कैसे पहुंचेगी? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर नेशनल लाइब्रेरी हैज अ रियली इंटरेस्टिंग आंसर टू दिस। QNL's हेरिटेज लाइब्रेरी हैज अनवील्ड अ न्यू एक्सेसिबल डिजिटल कियोस्क थ्रू विच 100 से ज्यादा सिलेक्टेड हेरिटेज आइटम्स को पीपल विद डिसेबिलिटीज डिफरेंट वेज में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड विजिटर्स देर आर ब्रेल इंटरफेसेस, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस एंड टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशंस। मतलब सिलेक्टेड हिस्टोरिकल मटीरियल को सिर्फ सुनना नहीं है, टच के थ्रू एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। एंड डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग विजिटर्स के लिए बो हमद अ डिजिटल अवतार यूजिंग कतरी साइन लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन को और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है। QNL says दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इन वन डिवाइस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हाँ जी, एंड मुझे इस न्यूज में टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक थॉट अच्छा लगा कि हम अक्सर कहते हैं हिस्ट्री बिलोंग्स टू एवरीवन, बट हिस्ट्री तभी एवरीवन की होती है ना, जब उसे एक्सपीरियंस करने का दरवाजा भी एवरीवन के लिए खुला हो। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक टेक्नोलॉजी इज बीइंग एग्जैक्टली यूज्ड।

0: Well, my bandhu, if you have a drone and you have that creative eye to shoot some great content in Qatar, lekin restrictions ki wajah se ya aap shoot nahi kar pa rahe, then I think so, aapke liye kuch darwaze ab khul gaye hain. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. अगर आपके पास ड्रोन है या फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए आप ड्रोन यूज करते हैं, कतर में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है. एंड प्लीज हेडलाइंस उनके नहीं यार. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और अगर आपके पास ड्रोन है या फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए आप ड्रोन यूज करते हैं, देन कतर में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है.
1: क्या खबर कतर?
0: वेल द खबर इज कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कोऑर्डिनेशन विद द जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी हैज अनाउंस्ड दैट ड्रोन ऑपरेशंस आर नाउ परमिटेड इन डेजिग्नेटेड एरियाज अक्रॉस कतर. अब डेजिग्नेटेड एरियाज कौन से है ये गेस वर्क नहीं करना है आपको, ठीक है ना. मेट्रैश ऐप पर ऑथराइज्ड एरियाज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और टाइमिंग्स भी बिल्कुल फिक्स्ड है. उसी वक्त में आपको ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है और वो है सनराइज टिल 9 AM, ठीक है, एंड देन अगेन फ्रॉम 2 PM अंटिल द सनसेट. बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स फॉलो करने होंगे. सिर्फ ऑथोराइज जोन्स में ही ऑपरेट करना है और जिस पर्पज के लिए परमिशन मिली है ड्रोन उसी पर्पज के लिए यूज होना चाहिए. कतर में ड्रोन यूज को रेगुलेट करने के लिए इस साल न्यू लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस हुई थी, कवरिंग थिंग्स लाइक रजिस्ट्रेशन, परमिटेड एरियाज, फ्लाइट रूट्स एंड ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स. सो ड्रोन एंथुसियास्ट के लिए डेफिनेटली दिस इज अ गुड न्यूज. बस टेक ऑफ से पहले बैटरी के साथ अब मेट्रैश भी चेक कर लेना. बाकी तो स्काई खुला है आपके लिए, क्रिएटिविटी के एंगल्स भी सारे खुले हैं एंड वी वुड लव टू सी योर क्रिएटिविटी. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
2: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
1: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
3: Only on Mirchi It's hot
4: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center
5: Back to school means more journeys more traffic and more reasons to drive with peace of mind
6: With Bima motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance including towing flat tire help battery jump start and lockout assistance plus flexible payments and 7% cashback call 800-0786 or visit bimaonline.com
5: Bima for your peace of mind terms and conditions apply
7: खट खट
8: कौन है
7: ईशांत
8: ईशांत कौन
7: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत
8: खट खट हू दैट
9: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: Well, क्या आपका मानना है कि कतर इज एन एक्सपेंसिव कंट्री इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म? तो फिर शायद आपका ये कहना गलत हो सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और टूरिज्म से जुड़ी हुई ये अगली खबर।
1: क्या खबर कतर?
0: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लेटेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कतर हैज रिकॉर्डेड द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली। यस, अब प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस सुन के ये मत समझना कि कल से होटल्स और फ्लाइट सडनली चीप हो गए हैं। बेसिकली ये देखता है कि एक ट्रैवलर के लिए डेस्टिनेशन ओवरऑल कितना कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक एकोमोडेशन, ट्रैवल रिलेटेड कॉस्ट, और कतर का स्कोर इस कैटेगरी में 49% इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से कतर 10 places jump करके 47th globally आ गया है। Overall tourism development score भी 2024 के comparison में 6% improve हुआ है। The fastest improvement in the Middle East. Yes, that's true. So next time अगर इंडिया से कोई friend बोले कि यार कतर तो आना है बहुत, लेकिन सुना है बहुत महंगा है, तो फिर उन्हें आप ये numbers बता सकते हैं। Well, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, right in on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बॉस आज की मैच तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ना, अब आर या पार वाला सिचुएशन आ गया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अरेबियन गल्फ कप की अगर बात करें तो नॉकआउट स्टेज में कतर है और आज कतर इज टेकिंग ऑन होस्ट सऊदी अरेबिया इन द सेमीफाइनल इन जेद्दा। वेल कतर का टूर्नामेंट अब तक काफी सॉलिड रहा है। ग्रुप स्टेज में पहले बारेन को 2-0 से, फिर यमन को 2-0 से और फिर फाइनल ग्रुप में मैच में यूएई के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ, जहां अल मोइज अली ने कतर को लीड दिलाई थी। सो कतर फिनिश ग्रुप बी 7 points, second only on goal difference, but आज challenge definitely bigger है। Saudi Arabia group A में 3 matches 3 wins के साथ top पर रहा है, so this is proper knockout football now। आज जीते तो सीधा गल्फ का final, और final है Tuesday 6th of October। So Qatar fans आज jersey निकाल लो, group chats activate कर लो और मुझे बताओ आज का match आप घर पर देख रहे हो, दोस्तों के साथ देख रहे हो या कहीं और big screen पर। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ right around मिर्ची। And all the best, चला ना बीज, सुनते रहेगा मिर्ची, it's hot।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vida la burga. Mirchi, burga.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
2: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
3: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप.
2: ना,
3: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
2: सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
3: होगा आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
2: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर. फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन.
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए.
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB.
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफेल लो और ड्राइव द ड्रीम.
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
4: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6
9: FM मिर्ची 1. It's hot.

0: Well, my friends, looks like my weekend is going to be funny. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड वीकेंड पर. जब सबसे बड़ा सवाल मेरा होता है ना कि यार ओटीटी पर क्या देखें, आई एम श्योर ये सवाल आपका भी होता होगा.
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है.
3: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: पहले तो हम बात करेंगे कुछ नए की नहीं, कुछ पुराने की. यानी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मैं बात कर रही थी चुंबक पार्ट वन के बारे में. एक ऐसा सीरीज जो बहुत ही ज्यादा फनी है ना. फनी का भी एक ये होता है, सबका फनी और कॉमेडी ना अलग रहता है, सेंस ऑफ ह्यूमर. सो अगर आप उस कैटेगरी में हो जहां पर आपको सारा भाई पसंद था, खिचड़ी पसंद था, देन दिस चुंबक इज डेफिनेटली फॉर यू, बिकॉज वही मेकर्स ने बनाया है. एंड स्टार कास्ट इज स्टेलर, आई शुड से दैट, बिकॉज देवेन भोजानी, नीना गुप्ता, सुमित व्यास, सुमित राघवन, अर्जुन बिजलानी एंड सो मेनी ग्रेट एक्टर्स. और ये एक चुंबक कॉलोनी के बारे में जहाँ पर ये सारे नेबर्स एक दूसरे की जिंदगी में इतने घुसे रहते हैं एंड इट्स हार्ड कोर कॉमेडी आई वुड से. सो ये जो है ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और इसका पार्ट टू जो है वो आ गया है. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि उसके आठ सीजन जो है, आठ एपिसोड्स जो है रादर, वो आ गए हैं. 15-20 मिनट के एपिसोड होते हैं, वेरी ईजी टू वॉच. कॉमेडी और एक है जो प्राइम पे है, वो है दोपहिया सीजन टू. अगर आपने सीजन वन देखा है जिसमें गजराज राव, रेणुका शाहने, स्पर्श श्रीवास्तव एंड भुवन अरोरा है, वेरी गुड परफॉर्मेंस और बड़ा ही मजे का ये भी है सीरीज, जहाँ पर एक गांव में है और गांव की पूरी कहानी है. इट्स अ स्वीट, ठीक है. फैमिली कंटेंट के बारे में आते हैं, इमोशनल कंटेंट थोड़ा, जहाँ ओ माई डॉग नेटफ्लिक्स पर आई है, जहाँ एक दिस इज पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म बाय द वे, और एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मिसिंग डॉग को ढूंढ रहा होता है और वो डॉग भी अपने मिसिंग ओनर को ढूंढ रहा होता है. सो बेसिकली एनिमल लवर्स जो है उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा. अब फिर से आते हैं थोड़ा सा कॉमेडी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कॉमेडी ड्रामा. बकायती सीजन टू ये भी Zee5 पर आ चुका है, जहाँ कटारिया फैमिली इज बैक विद मनी प्रॉब्लम्स है इनके पास, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कलेश है फैमिली के, एंड आई थिंक सो एवरीवन मिडिल क्लास जो बिलोंग करते हैं दे विल ऑल्सो रिलेट टू इट, कि यार ऐसे किरदार कोई ना कोई आप अपने फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे. तो बहुत कुछ हो गया यार, कॉमेडी हो गया, फैमिली ड्रामा हो गया, इमोशनल कॉन्टेंट हो गया. बेसिकली आई फील दिस वीकेंड वॉच लिस्ट इज यू रेटेड. नहीं तो क्या होता है ना कि जनरली ओटीटी पर अमूमन बहुत ज्यादा ए रेटेड कॉन्टेंट आता है, फैमिली के साथ बैठकर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो ये हफ्ते थोड़ी सॉर्ट हो गई है. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: पता है दोस्त, अच्छा इंसान होने के लिए ना कोई बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें करनी जरूरी नहीं होती। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी की खुशी की वजह बन जाना और कभी किसी के बुरे वक्त में बस उसके साथ खड़े रह जाना, आई थिंक सो काफी है ना। बस इसी ख्याल पर आज के आफरीन की डायरी से चंद लाइंस है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि चेहरों के भीड़ में एक किरदार होना, मतलबों की दुनिया में एक बेगर्ज होना, किसी की खुशी का सबब किसी का गम का हमदर्द होना। तो किसी की खुशी का सबब किसी के गम का हमदर्द होना, दुनिया से मिले चाहे कितने भी जख्म, दुनिया से मिले चाहे कितने भी जख्म, फिर भी किसी के लिए मरहम होना। शायद शायद यही तो है सिर्फ जिंदा नहीं सच में इंसान होना। हाउ नाइस थॉट यार। मतलब ये जो शायर और राइटर्स जो इस तरह से लिखते हैं, आई एम सच ए ह्यूज फैन ऑफ इट। इतनी गहरी बात इतनी खूबसूरती से, वाओ। किसी के लिए मरहम होना, बस ये लाइन आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है ना। Enjoy this track, Writer and Mirchi, Mike Siddle, Tak Afreen है आपके साथ, it's hot.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. Let's hear it from them.
1: Yes, it was the best. I like the magic show.
2: Magic show and you?
3: I also like the magic show very much. It was so good. It was very nice.
2: You liked it?
3: Yes.
2: We should come again?
3: Yes.
2: What's your name?
3: Aira.
2: And yours?
3: Anvita.
2: What was the best?
3: The magic show.
2: And you?
3: Magic show. I like magic show.
2: Magic show. Jamshi uncle was great.
1: This recharge is so cool.
4: एकदम सही सुना तुमने. KIMS Health पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन. कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं. बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो.
5: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ. बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ KIMS Health पर.
6: कौन है?
7: स्टेन.
6: स्टेन कौन?
7: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को. मैं नहीं देता पैसे, जाओ.
8: खट खट.
9: Only on 89.6 मिर्ची 1. It's hot. मिर्ची mornings brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: चलिए दोस्त, एक नॉर्मल से डे को स्पेशल बनाने का फॉर्मूला बताती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए ना, हमारे घर में ऐसे कितनी चीजें होती हैं जो हम ना स्पेशल ओकेशंस के लिए रखते हैं, जैसे आपका वो एक स्पेशल ड्रेस है या फिर नॉर्मल सा एक डिनर सेट है, अच्छा वाला एक जो आपने सिर्फ अपने गेस्ट के लिए रखा हो, या फिर वो एक्सपेंसिव परफ्यूम हो सकता है जो आप ना सिर्फ स्पेशल ओकेशन के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभार हम चीज़ें इतना सेव करते हैं वो ओकेशंस का कि वेट थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाता। देखिए, एक नॉर्मल से दिन को थोड़ा सा अगर आपको स्पेशल करना है या अपने आप को एक फील गुड वाली फीलिंग देनी है कि नहीं यार, दिन को कुछ अच्छा सा एक अपग्रेड करते हैं, तो ये सारी चीजें जो आपने बचा के रखी है ना, वो स्पेशल ड्रेस ही क्यों ना हो, आपका फेवरेट वाला, या परफ्यूम लगा लिया, या वो चीज़ें जो आपको पसंद है, वो अच्छे वाले कॉफ़ी मग में जिसमें गेस्ट को आप कॉफ़ी देते हो वो लेकर बैठ लिया, तो बस देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको ना अच्छा लगेगा। थोड़ी देर से के लिए क्यों ना सही, लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ यूज़ करने से नॉर्मल डे स्पेशल बन जाता है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। मेरी ड्यूटी फिलहाल होती है ख़त्म, मैं मिलूंगी जल्द ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले इजाजत है जाने की, टाटा बाय बाय सायोनारा, हैव अ ग्रेट डे और सुनते रहिएगा मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
5: Toilet? हाँ. School था, कंजर खाना खोला हुआ था.
4: The दोनों.
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
7: and earn Qatar Airways Avios today.
6: Visit our branches or download the app now.
8: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। Let's hear it from them.
9: Yes, it was the best. I like the magic show.
10: Magic show and you?
11: I also like the magic show very much. It was so good. It was very nice.
10: You liked it?
11: Yes.
10: We should come again?
11: Yes.
10: What's your name?
11: Aira.
10: And yours?
11: Anvita.
10: What was the best?
11: The magic show.
10: And you?
11: Magic show. I like magic show.
10: Magic show. Jamshi uncle was great.
11: This recharge is so cool.
0: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health

सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। मैं क्या, मौसम का बदलाव होने ही वाला है और अक्टूबर का आगाज हो चुका है। जी हाँ, जैसे ही अक्टूबर का आगाज होता है तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मौसम अब बदल जाएगा, एकदम से ना मौसम में बदलाव आ जाएगा। और वाकई में ऐसा होगा, बस एक दो दिन और रुक जाइए, आपको सुबह की जो हवा है ना वो ठंडी लगने लग जाएगी, शाम की हवा भी ठंडी लगने लग जाएगी, लेकिन हाँ बीच में वैसा ही मौसम रहेगा गर्मी वाला। लेकिन येस ऑफ कोर्स, अक्टूबर इज समथिंग जो एक मौसम के तौर पे ना खुशियां लेके आता है। ऐसा लगता है कि भाई बस अब आने वाला है विंटर और कोजी कोजी नाइट्स, बारबेक्यूज जो हम लोग पार्क्स में करते हैं, एंड ऑफ कोर्स पिकनिक्स बहुत सारी, एंड उसके अलावा बीच पे आप जाते हो पिकनिक मनाने, बीच पे करते हो आप अपना बारबेक्यू सेटअप, इतना कुछ, इतने ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं ना जब आप विंटर में कतर को देखते हो। बस खूबसूरत नज़ारा आने वाले टाइम में मौसम के बदलते ही, ओह क्या ही नज़ारे होने वाले कतर के। बस अभी चंद मिनटों में मैं आपको बताऊंगी होने वाले सारे इवेंट्स, एग्जीबिशंस, शोज, सब कुछ हेयर ऑन माय शो। बस करना क्या है, बस बने रहिए ना मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ। किस पे? 89.6 मिर्ची 1 पे। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो, हाँ जी बोलिए।
3: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
3: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
3: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
3: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मैं देख रहा हूँ नंबर।
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
2: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
3: हेलो,
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
3: फोन नहीं कर रहा अभी,
2: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए, मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ
3: मैं चप्पल, पता
2: नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन
3: क्यों आराम कर दिया तुम जैसे
2: जीना, बता रहा हूँ यहाँ से भाग, इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा, चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
3: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
5: it's hot.
6: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
7: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
6: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew. So much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: Cut, cut.
11: Who that?
10: Jassi.
11: Jassi? Kaun si wali Jassi?
10: Jassi who has come, auntie ji?
11: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ गानों के साथ ना बहुत जुड़े होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब उस गाने को, बहुत पुराने गाने को जो मैंने शायद अपने कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में सुना हो, उस गाने को मैं अगर दोबारा अभी सुनूंगी ना, तो मुझे एक वो फीलिंग सी आएगी, वो फीलिंग आएगी जो मुझे शायद स्कूल टाइम पे आती थी। आई थिंक दैट वॉज द फ्रेंड सर्कल, दैट वॉज द टीनेजर थिंग, जो भी वो एक ऑरा था, वाइब थी उस टाइम की, वो मैं अभी भी फील कर पाती हूँ। आप भी मानते हैं क्या गानों के साथ ऐसा रिलेशन हो जाता है? अगर आप भी ऐसा मानते हैं ना, तो मैं आपको ये एक सच्चाई बताती हूँ, ऐसा होता है। आप बैक टू डोज मेमोरीज चले जाते हो जब आप किसी पुराने गाने को सुनते हो, उससे जुड़ी जो भी मेमोरीज होती हैं वो आपको याद आ जाती हैं। एंड सेम विद नॉट ओनली विद द सॉन्ग्स, लेकिन ये आपका परफ्यूम्स के साथ भी होता है। परफ्यूम के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप होता है ना इंसान का, कि अगर आपने 4 साल पहले या 5 साल पहले वो परफ्यूम लगाया है और उसके साथ जो यादें जुड़ी हैं, सपोज आप उस परफ्यूम को लगा के आप कहीं घूमने गए हो, यूरोप गए हो या कहीं भी दुनिया में घूम रहे हो, उस परफ्यूम को लगा के आप अगर उस परफ्यूम को छोड़ देंगे कुछ सालों के लिए, अगर आप उसको फिर दोबारा से सूंघेंगे, आपको वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। जब आप घूमने गए थे, जब आपने शायद मेट्रो पहली बार ली थी यूरोप में, या फिर पहली बार आपने वैटिकन सिटी में आइसक्रीम खाई थी, उन सब यादों को ताज़ा होना लाजमी है उस परफ्यूम की खुशबू से। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं ना, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं मिर्ची वन कतर पे एंड ऑल्सो मिर्ची ईशा पे, एंड ऑल्सो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5111089 6 पे भी बता सकते हैं कि आप क्या मानते हैं। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो नॉट ओनली विद दीज थिंग्स, फूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड के साथ भी ऐसा ही, अगर आपने कोई ऐसा खाना आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दे, बस आपको लगेगा कि इस याद से ये खाना मुझे इस इंसान ने खिलाया था ऐसे बना के, बस आपकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बस वैसे ही फिलहाल मैं आपको गानों के साथ साथ बताऊंगी इवेंट्स, बस मेरे साथ बने रहिए 89.6 पे मिर्ची वन पे, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

कि जैसा देश वैसा भेष। एंड इट सिंपली मीन्स कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का ट्रेडिशन कल्चर को इतना करीब से देखिए और इतने करीब से उसको यू नो फॉलो करिए ताकि आपको लगे कि आप इस कंट्री के ही फैमिली मेंबर हो। तो बस अगर आपको भी मेरी तरह इन ट्रेडिशंस को और क्रिएटिव साइड्स को देखना पसंद करते हैं या आप उसमें यू नो अपने आप को इंडल्ज करना डिग करना पसंद करते हैं ऐसे कल्चर में, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूँ। जी हाँ, बता दूँ कि होने जा रहा है मीना डब्ल्यू फीना, जो हो रहा है आउटडोर कोर्टयार्ड अल हजम में। एंड ये 24 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो नो हरी, आप आराम से जाइए जब मर्जी। एंड इसके टाइमिंग्स हैं 3 PM to 11 PM। एंड ऑफकोर्स इसमें कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है आपको, टोटली फ्री है एंट्री। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं वो एटमोसफेयर ऑफ यू नो कतारी बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस या आपका कह लो कि क्राफ्टेड चीज़ें हैं या पेंटिंग्स हैं जो कतर की प्रॉपर जो यू नो ट्रेडिशन शो करता है, हेरिटेज शो करता है। इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी कतर की, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, क्रिएटिव साइड देखना चाहते हैं कतर की, जाइए इस वीकेंड और इन्जॉय करिए बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। बिकॉज आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, फैमिली के साथ शाम को जाके इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह पसंद करते हैं ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो ज़रूर जाइएगा। And stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL, Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alphadan Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alphadan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
7: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
8: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
7: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
8: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
7: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

अतर को जैसा हम आज की डेट पे देखते हैं वैसा ही कई साल पहले नहीं था। बहुत बड़ा चेंज कतर में देखा गया है। और अगर आप इस चेंज को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कतर ने कहां से शुरू किया और किस तरीके का लाइफस्टाइल था उसका पहले, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक ऐसी जगह जहां पे आप बहुत साल पीछे चले जाएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कतर की हिस्ट्री, लाइफ, किस तरीके से ट्रेडिशनल होम्स होते थे, विलेज स्ट्रीट्स होती थी, हेरिटेज सब डिस्प्ले है, किस तरीके से लोग पहले ज़माने में रहते थे, किस तरीके से वो व्हीकल्स जो है उनमें ट्रैवल करते थे। एंड उसके अलावा आपको ये ब्यूटीफुल सी कंट्री की प्राइवेट कलेक्शन आपको मिलेगी सिर्फ एक जगह, दैट इज़ शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम में। एक और बात बता दूं कि हर कॉर्नर जो है ना वहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा जो आपको तो फैसिनेट करेगा ही, लेकिन आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जैसे कि वो कतर हिस्ट्री भी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जब वो कतर की हिस्ट्री को देखेंगे दे विल फील फैसिनेटेड एंड दे विल फील कि यार मुझे और जानना है कतर के बारे में, वाकई में ऐसा फील होगा। और अगर आप इस म्यूज़ियम में पहले जा चुके हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर बताइएगा कि आप गए थे बच्चों के साथ और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था। आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं और मिर्ची ईशा पे भी ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था। और उसके बाद या उससे पहले कभी भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अल समरिया इस्टेट है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं पीसफुल सराउंडिंग्स। यहाँ पे आपको अरेबियन ऑरिक्स भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको पीकॉक्स भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा शेख फैजल बिन कासिम अल थानी म्यूज़ियम के पास। एंड अगर आप नहीं गए हैं तो जाइएगा ज़रूर। इस वीकेंड बच्चों को लेके जाइए और इन्जॉय करिए इस वीकेंड को। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: बड़ी कानाफूसी चल रही है कि बड़ा सा इवेंट आने वाला है, तो भाई ये क्या सच है? देखो मिर्ची ईशा आपके साथ है और आपको कोई इवेंट के बारे में ना पता हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं होने देती। लेकिन आपको बता दूं कि भाई सच्ची में एक स्नीक पीक लेके आई हूँ एक ऐसे इवेंट की जो भी शुरू भी नहीं हुआ है, होने वाला है जल्दी एक ऐसा बबल प्लैनेट इवेंट जहाँ पे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आने वाला है आपके दोहा में बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि यहाँ पे 10 से भी ज्यादा इमर्सिव थीम्ड रूम्स हैं, वीआर एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरैक्टिव सिमुलेटर्स हैं, ऑप्टिकल इल्यूजंस हैं, जायंट्स फेयर्स हैं, बलून्स, कलरफुल विजुअल इफेक्ट्स, ओ माय गॉड क्या क्या नहीं है, जो बोलोगे आपको वही मिलेगा। आज के जमाने का कोई भी इवेंट आप निकाल के देख लो, इमर्सिव एक्सपीरियंस के बिना मजा ही नहीं आता। तो बस अगर आप भी चाहते हैं इस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने का जो मौका मिल रहा है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेट जो है दैट इज 6th दिसंबर से ये शुरू होगा और ये 6th फरवरी 2027 तक रहेगा। एंड ऑफकोर्स ये बता दूं कि ये जो इवेंट है ना, ये आपका विंटर वेकेशन के टाइम बहुत काम आने वाला है, बड़ा मजा आएगा। कतर में हो, विंटर है और ये एक्सपीरियंस है भाई, मजा ही आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। QNCC में होने जा रहा है ये, एंड ये हर एज के बच्चों के लिए ओपन है। ऑफकोर्स 17 से एज से जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएं तो बेटर है, एंड उसके अलावा चिल्ड्रंस अंडर 4 आर टोटली फ्री। भाई इतना बड़ा और इतना वाइड एक्सपीरियंस हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो जब मिले फटाक से उसका इस्तेमाल करिए, यूज करिए और एक्सपीरियंस का लुफ्त उठाइए एंड एंजॉय विद मी, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स लेके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1.8
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: हाँ मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से, जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या, ये सुनिए ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो।
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर,
7: यस बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
6: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए,
7: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
6: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफेल लो और ड्राइव द ड्रीम।
8: आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
9: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
10: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती हैं सारी पहेलियाँ। जी हाँ, पहेली तो लगेगी ना, क्योंकि अब आफ्टर 30 या 35 के अबव आपका गाना बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप बोलते हो डॉक्टर दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, यही रह गया है मेरी जिंदगी में। अब ये गाना इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स आइसक्रीम से कोई कैसे पीछा छुड़ा सकता है ना, और आइसक्रीम का नाम सुनते ही दूर कैसे रहा जाए भैया। आइसक्रीम का नाम से मुंह में पानी आने लग जाता है, ठंड सी लगने लग जाती है, सनसनी सी होने लग जाती है। तो बस अगर आपको भी ऐसा ही एक इवेंट चाहिए ना, ठंडा ठंडा सा एकदम कूल करने वाला, तो आपके लिए एक इवेंट लाई। हाँ जी, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल आइसक्रीम शो होने जा रहा है ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं इस ब्रांड न्यू शो को। और ये एकदम नया होने वाला है, पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा ऐसा शो जहाँ पे आपको आइसक्रीम शो देखने को मिल रहा है। भाई गॉड यार, क्या होने वाला है ये तो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जाके देखना जरूर है कि होगा क्या। एंड उसके अलावा आपको ये 3 अक्टूबर तक, माइंड यू 3 अक्टूबर तक ही है, ये जाना चाहते हैं इस वीकेंड जाइए, 4:30 PM से 8 PM तक ये रहेगा, और आप इंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड एक ठंडा ठंडा माहौल के साथ, कूल कूल माहौल के साथ इंजॉय कर सकते हैं आइसक्रीम शो को। और बस ऐसी मजेदार बातों के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

और बच्चों के पास ना एक खुल के खेलने का स्पेस है भाई, एक्सप्लोर आराम से कर पाएंगे बच्चे, चाहे वो एनिमल्स को कर रहे हो, चाहे नेचर को कर रहे हो, सब कुछ। और ये हिडन जेम ना आपको मिलेगा अलशुआ रिजर्व में, अलखोर में। और ये सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है इसकी, की एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का या मॉल या रेस्टोरेंट से थोड़ा बोर हो गए ना, थोड़ा ब्रेक चाहिए वहाँ से, तो नेचर के साथ एक पीसफुल डे एंजॉय करना है, तो अलशुआ रिजर्व जाइए एंड स्पॉट दिस ब्यूटिफुल प्लेस विद योर फैमिली एंड निकल पड़िए एक बजट फ्रेंडली एडवेंचर पर। और फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिशिवन। इट्स आर्ट।

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्स जो बाकी को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट अकबर।
6: अकबर हु?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट हु दैट
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

बातें तो बहुत थी पर वक्त थोड़ा कम था। आपका साथ मिला तो हर पल कुछ खास था। और जब इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि जाने का समय आ चुका है। जी हाँ, और बस अब जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद ज़रूर करते रहिए। और उसके साथ अगर मैं चली गई अभी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो भी भेज सकते हैं मिर्ची ईशा के नाम से, या मिर्ची वन कतर पे भी आप हाय हेलो बोल के मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिप्लाई आता है और आप लोग बताते हैं कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और अब लेती हूँ आपसे अलविदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ आपको अगले वीकेंड। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट यू नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: only on Mirchi, it's hot.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं।
2: oh, no.
0: फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यार मुझे एक बात बताना, क्या तुम भी इस वक्त सही वक्त का इंतजार कर रहे हो?
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: न जाने हम में से कितने लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, उसकी शुरुआत होगी, जरूर होगी, लेकिन सही वक्त आने पर। लेकिन यार सच तो ये है कि रास्ते पहले से कभी बनते ही नहीं, सही वक्त तो कभी होता ही नहीं। जैसे रास्ते चलते चलते बनते हैं, वैसे ही सही वक्त कोशिशों से आता है। शायद इसीलिए जिंदगी में अगर कोई शब्द हमने सबसे ज्यादा सीखा है तो वो है कंसिस्टेंसी। कि जिस दिन कुछ करने का मन करे उस दिन दिल से करो, लेकिन लगे कि नहीं यार आज नहीं, सही वक्त आने दो, तो उस दिन कुछ करो ना करो, एक छोटा सा कदम जो है वो जरूर आगे लो। एंड इस बात पे ना मैंने कुछ लिखा है, सुनाती हूँ। एक ख्वाब चुनो और उसे अपना आसमान कर लो, छोटा ही सही एक सफर अपने नाम कर लो। देखो हर रोज मंजिल मिले ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रोज एक कदम बढ़े बस इतना सा काम कर लो। कभी धूप मिलेगी कभी शाम ढलेगी, कभी राहत तुम्हारे ही कदमों में बस आ चलेगी। तुम थकना जरा रुकना मगर लौटना नहीं, जो आग दिल में रखी है उसे कभी बुझाना नहीं। तो बस क्यों ना सही वक्त को हम खुद ही लिख दें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vie va la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: जरा देखें आज अल्फरदान एक्सचेंज में गोल्ड रेट्स क्या कहते हैं। अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे तो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार टुडेज प्राइस टेट कतरी रियाल्स 562, वहीं 5 ग्राम्स की मैं बात करूं सो इट इज प्राइस टेट कतरी रियाल्स 2629, 10 ग्राम्स टुडेज प्राइस टेट कतरी रियाल्स 5187, वहीं अगर 1 आउंस की बात करें सो इट इज प्राइस टेट कतरी रियाल्स 16033, एंड 10 तोले की बात करूं सो इट इज प्राइस टेट कतरी रियाल्स 59512। तो बस गोल्ड परचेसिंग की बारी जो है वो आ ही चुकी है, क्यों ना घर के लोगों को खुशियों के साथ साथ हम जो है अच्छा निवेश का आइडिया भी दे दें। एंजॉय बंदी का नाम।
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24-कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: एक बात बताना, क्या आपने कभी वो 50 पैसे का गोला या 2 रुपए की कुल्फी खाई है?
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, इस वक्त अगर मैं अपनी दास्तान बताने की कोशिश करूं तो बचपन के दिनों में माँ बाप और टीचर्स की डांट के अलावा अगर मैंने सबसे ज्यादा कुछ खाई है तो वो है 2 रुपए वाली कुल्फी। सही कह रही हूँ? मतलब स्कूल खत्म होने के बाद हमने सबसे पहले अगर धावा कहीं बोला है तो उस ठेले पे जहाँ पे 2 रुपए की कुल्फी एंड साथ में 50 पैसे का गोला हुआ करता था। भाई क्या दिन थे। इमेजिन करे, हम बर्फ गोला जो है मात्र 50 पैसे में खाया करते थे। एंड यार, जितनी बेसब्री से हमने उस कुल्फी वाले भैया का इंतजार किया ना, उतनी बेसब्री से तो एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद हमारे माँ बाप ने भी हमारा नहीं किया। हमें सिद्धार्थ, इस वक्त अगर आइसक्रीम के आप भी उतने बड़े फैन है जितनी की मैं हूँ, तो सीधा अगर आपको कहीं पहुंचना है तो वह है मॉल ऑफ कतर, जहाँ ओएसिस स्टेज में इस वक्त अगर आप कुछ एंजॉय कर पाएंगे तो वह है इंटरनेशनल आइसक्रीम शो। मतलब इतना बता दूं, जहाँ पे एक तरफ स्टीम है, एक्सपेरिमेंट्स है, क्रेजी कैरेक्टर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ आइसक्रीम की दुनिया का एक अनोखा एक्सपीरियंस है। एंड बहुत सारे चैलेंजेस भी वहाँ लाइव चल रहे हैं, जिन्हें जीतने पर ना ही सिर्फ आइसक्रीम टेस्ट करने का आपको मौका मिलेगा बल्कि बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स जो हैं आप जीत ही पाएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम समर्स को अलविदा कहें, क्यों ना आइसक्रीम को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में वेलकम कर ही लें। एंड ये कंटिन्यूड रहेगा 3rd of October तक। सो भैया, मौका भी है, दस्तूर भी है, जाओ एंजॉय करके आओ। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry bro, sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार देखो बात इतनी है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना ये बड़ी सिंपल और क्लियर है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे अपनी रिक्वायरमेंट तो बस इतनी सी ही है कि जब भी ट्रैवल पे निकले तो मजा भरपूर होना चाहिए लेकिन खर्चा ये जरा कम होना चाहिए। यार हम जब भी किसी हॉलिडे की प्लानिंग करते हैं ना तो तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहली बात कि जगह कितनी अच्छी है, दूसरी एक्सपीरियंस कैसा होगा, एंड थर्ड ये पॉकेट पर कितना भारी पड़ेगा। वेल अगर इस वक्त मैं तीसरे डिपार्टमेंट की बात करूं और उन लोगों से लिंक करने की कोशिश करूं जो कतर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भैया तीसरे डिपार्टमेंट में कतर ने दुनिया भर में एक बड़ी छलांग लगाई है। वेल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में कतर ने 10 प्लेसेस की जंप लगाते हुए अब ग्लोबली 47th पोजीशन पर अपना नाम शामिल कर ही लिया है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टूरिज्म की प्राइस कंपेटिटिवनेस में कतर का स्कोर तकरीबन 49% इंप्रूव हुआ है जो दुनिया भर का सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन भाई साहब इसका मतलब क्या है? यार इसका मतलब बस इतना ही है कि कतर एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है जहां पर बेटर वैल्यू और ज्यादा प्राइस कंपेटिटिव चीजें एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। यहां पर ट्रैवल करना, स्टे करना और टूरिज्म एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करना कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर हुआ है। बढ़िया है जी, जब दुनिया की तकरीबन 3/4 डेस्टिनेशंस प्राइस बढ़ा रही हैं वहीं हमारा देश ऐसा है जो लोगों को बेटर एक्सपीरियंसेस देते हुए चीजों को ठीक कर रहा है। मैं तो कहती हूँ घर वालों को बुलाने का अच्छा मौका आ गया, इससे पहले की चीजें इधर उधर हो तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, तुमने घुमा फिरा दिया। यू नो जस्ट सेइंग। स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

Man. Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: यार सच कह रही हूँ, कोई प्रमोशन कोई ऑफर आए या ना आए, लेकिन हाँ इसका आना जो है हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे बस उसी ऑफर उसी प्रमोशन की बात कर रही हूँ कि बदलते मौसम के साथ सर्दी और जुखाम का आना। हाँ ये ना आए तो उसके बगैर मौसम कैसे बदले। वल जहाँ पे एक तरफ गर्मियाँ जो है ऑफिशियली कतर से अलविदा कह चुकी हैं, ऑटम सीजन ने दस्तक दे दिया है, लेकिन वहीं बदलते मौसम के साथ सर्दी और जुकाम की लहर एक बार फिर से देश में देखने को मिल रही है। तो वाले इतना ही कहना चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक फंडा है, एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, जब भी मुझे ऐसा लगे कि मौसम जो है वो बदल रहा है, आई मेक श्योर कि कुछ दिनों तक मैं रेगुलरली रात में सोने से पहले स्टीमिंग करती हूँ, एंड साथ ही गुनगुने पानी से नमक के साथ गार्गल करती हूँ। एंड सच कहूँ, इट हैज़ रियली हेल्प मी प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द वायरल इन्फेक्शंस। ये मेरा नुस्खा है जो ज़रूर काम आता है, शायद आपके लिए भी हो जाए। तो बस कुछ दिनों तक इसे अडॉप्ट कर लो, फिर बाद में ठंडी का मौसम आया बल्कि आइसक्रीम खाएंगे आपके घर। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, it's hot.

0: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
1: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: किसी की पता नहीं किसकी थी
2: ना. आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
1: मैंने क्या किया?
2: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपको यही डायलर टोन मिली थी. जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है नहीं है? मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये जाना सनम.
1: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं.
1: सुनिए मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से थोड़ा ना बीमार हो.
2: आपके कारण से हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए.
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
1: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग. बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है. अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक. देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट. और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट. है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
5: इट वाज द बेस्ट. आई लाइक द मैजिक शो.
6: मैजिक शो? एंड यू?
5: इट वाज वेरी नाइस.
6: यू लाइक इट?
5: यस.
6: वी शुड कम अगेन?
5: यस.
6: व्हाट्स योर नेम?
5: आयरा.
6: एंड योर्स?
5: अनविता.
6: व्हाट वाज द बेस्ट?
5: द मैजिक शो.
7: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स.
8: थैंक यू मिर्ची, थैंक यू GWM, वी एंजॉयड इट्स ऑल.
9: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
10: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन.
9: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए.
10: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB.
9: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम.
11: खट खट.
12: कौन है?
11: अज्जू.
12: अज्जू कौन?
11: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए!
12: खट खट, हू दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: गली के चक्कर लगाते हुए स्कूल कॉलेज टाइम में खुद को हीरो समझने वाले जीरोस को तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन अब जरा असल हीरो से मुलाकात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: और मैंने तो अभी से डिसाइड कर लिया है कि मैं जो हूँ वो रेड वाली गाड़ी को सपोर्ट करने वाली हूँ। वाले एक बार फिर से अगर कतर में किसी की वापसी होने वाली है, सो दैट इज मोटो जीपी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 12th ऑफ मार्च से लेकर 14th ऑफ मार्च तक लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में अगर कुछ मचने वाली है तो वो है धूम। एब्सोल्युटली यू हर्ड इट राइट। लेकिन सबसे खास बात, अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो इस बार कतर सीजन का सेकेंड राउंड होगा थाईलैंड के सीजन ओपनर के इमीडिएटली बाद। लेकिन कतर के MotoGP रेस की सबसे स्पेशल बात, द नाइट मैन। फ्लड लाइट्स के नीचे इंजन्स जो है वो रोड करती हुई, बाइक्स जो है पूरी तरह से फ्लाइट डाउन करते हैं, एंड कतर एक बार फिर से MotoGP कैलेंडर की ओनली नाइट रेस बनने को है पूरी तरह से तैयार। तो मार्च 2027 का कैलेंडर अभी से सेट कर लीजिए, उसके बाद मुलाकात करेंगे। आपकी पीली गाड़ी का मुकाबला होगा हमारी रेड गाड़ी से। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
1: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी। मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
6: 89.6
7: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखो एक ही बात कहना चाहूंगी, ये जो सर्कल है ना, इसे बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करना, वरना जिंदगी भर बस चक्कर ही लगाते रह जाओगे।
1: मिर्ची अंशु।
0: वो कहते हैं ना कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को डिफाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके जैसे बनने लगते हैं। इसीलिए तो जिन लोगों जैसा बनना चाहो, दोस्त यारी भी जो है बस उसी हिसाब से किया करो। या लेकिन सच कहूं, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ हंसने गाने का नाम नहीं यार, ये तो वो रिश्ता है जो कहीं ना कहीं हमें और बेहतर बना सके। दोस्त वो जो आपकी कामयाबी से खुश हो, आपकी उड़ान को और ऊंचा देखना चाहे, दुनिया के सामने आपकी ढाल बने लेकिन जब बात आपकी हो ना तो आपके सामने आपका आईना बने। लेकिन हाँ, दोस्त वो भी हो जो उसके नंबर आपसे कम आने पर कभी ना कभी आपसे खुद नाराज हो जाए। वेल, दोस्ती जो है ना जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है यार, एंड इसमें मैंने कुछ लिखा है, सुनाती हूँ। मेरी जीत में जो मुझसे ज्यादा मुस्कुराए, मेरी भूल पे जो मुझे आईना दिखाए, दुनिया से लड़ जाए जो मेरे नाम पर, अरे दोस्त वही जो मुझे मुझसे बेहतर बनाए। एक बात बताओ, किस दोस्त का नाम याद आया ये सुनकर? ऐसी कोई दोस्ती है जिंदगी में? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची आंशु। स्टेडियो टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Nidhi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वारसी, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
3: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी, मे एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: घड़ी का कांटा ना इस वक्त मुझे एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा है।
1: मिर्ची अंशु
0: कि अंशु तुमने अपनी खूबसूरत बातों से औरों का दिल तो बहुत भर लिया, अब जरा अपना पेट भी भर लो। सच कह रही हूँ, तुम चाहे कितना भी काम क्यों ना कर लो, बात करते करते जो इंसान थकता है उसके बाद जो उसे भूख लगती ना उसका अंदाजा जो है तुम कभी नहीं लगा सकते। नहीं वैसे तुम्हारे कान जो है ना, कानों के जरिए दिल तक मेरी बातें जो पहुंची हैं, तुम्हारा दिल जो है भर आया है। एंड इस वक्त मैंने सोच लिया अपने पेट भरने का इंतजाम करना है तो कैसे करना है। वेल आज मैंने घर पर ना बड़ा ही कमाल का खाना बनाया हुआ है। आज मेरी स्पेशल मील है बाजरे की घाट। एब्सोल्युटली कभी कभी ना चेंज स्पेसिफिकली जब मौसम बदलता रहता है तो मैं ऐसी गर्मा गर्म चीजों को, घाट के फॉर्म की चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करती हूँ किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो बस अब मेरी ये गोल्डन रेसिपीज जो है ना हर दिन घाट के जरिए मेरी जिंदगी में शामिल होंगी एंड मैं हर दिन आपसे शेयर करती रहूंगी। वैसे व्हाट इज द प्लान फॉर योर लंच, क्या सोचा है? 5000 1896 लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग फ्रॉम यू। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, बट अभी फिलहाल मसलामा हबीबी, सी यू सून, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।
2: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1,
3: go. हर हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में नए गाने जन्म लेते हैं. कुछ गाने पहली बार सुनते ही दिल में उतर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी रात की याद, किसी जर्नी का साउंड ट्रैक या किसी अधूरी कहानी की आवाज बन जाते हैं. उनके पीछे होती हैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से और ऐसे सवाल जो म्यूजिक खत्म होने के बाद भी हवा में ठहर जाते हैं. हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का बॉलीवुड का सबसे डेफिनेटिव म्यूजिक काउंटडाउन. और आज का जो काउंटडाउन है वो भी एक म्यूजिकल जर्नी है, जहां मिलेंगे नए हिट्स, पुरानी यादें और उन गानों के पीछे छुपे वो राज जिन पर शायद आपने कभी उतना गौर नहीं किया. सो I've got you covered. Number 20 पर है Welcome to the Jungle का ये गाना ऊंचा लंबा कद, which has been rehashed. लेकिन इस जर्नी की पहली धुन होगी कॉकटेल की माशूका. Turn the volume up. This is the Mirchi Talk 20. Let's go.
1: Number 19.

तमन्ना भाटिया की एक्टिंग चॉप्स और स्क्रीन प्रेजेंस अपनी जगह है, लेकिन ठुमक ठुमक देख के लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अगर तमन्ना है तो एक डांस नंबर तो बनता है। एंड वन यार इसका ये गाना था जिसने नंबर 18 पर डेब्यू किया। I've already spoken about this song last week, लेकिन ट्रेलर देखते हुए मुझे एक ख्याल आया, यार बॉलीवुड ने जंगल को कभी प्रॉपरली खतरनाक बनाया ही नहीं। देखो हॉलीवुड में ऐसी बहुत फिल्में हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जुरासिक पार्क और द बीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आप अगर एक जंगल में हैं या आप एक समंदर में हैं और सामने कोई ऐसा जानवर है जो आपको खा सकता है, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। किसी भूत की जरूरत नहीं, किसी आत्मा की जरूरत नहीं, प्रकृति यानी नेचर खुद विलन है।

0: टाइगर अटैक्स, जंगल थ्रिलर्स एंड फिर अक्सर हम सुपर नेचुरल की तरफ मुड़ गए। यार इंडिया में इतने घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ है, डेंजरस एनिमल्स हैं और एक ऑडियंस है जो जेन्युइनली एज ऑफ द सीट सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहेगी, क्योंकि मैं तो देखूंगा। एक फैमिली, एक जंगल और सामने एक जानवर जो विलन नहीं है, बस जानवर है। लेकिन टॉकिंग अबाउट फैमिली, एक और परिवार है जो स्क्रीन पर हमें पागल करने वाला है, एंड दैट इज अजय देवगन यानी कि विजय साळगांवकर का परिवार। दृश्यम 3 का ये गाना विच डेब्यूट लास्ट वीक, दिस वीक इट्स ऑन नंबर 17, विंगंसा
1: नंबर 17।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो।
2: हाँ जी बोलिए।
1: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
1: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
1: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
1: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मैं देख रहा हूँ नंबर।
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
2: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो। हाँ बताइए।
1: तेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
1: हेलो।
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे। बदतमीजी से बात मत करिए आप, समझ गए। मैं यहाँ से चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। है ना, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
1: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन
1: जीना आराम कर दिया तुम जैसे।
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से, भाग। इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
1: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट, और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी, तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 16.

0: कॉकटेल 2 लुक लाइक अ ग्लोबल फिल्म, और ग्लोबल बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मॉडर्न दिखने की कोशिश में हम अपनी ही आवाज को पुराना समझने लगते हैं। परफेक्ट हिंदी बोलें तो बैकग्राउंड हम्बल लगता है, इंग्लिश मिला दें तो सोफिस्टिकेटेड लगता है। और ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये अपनी जड़ों को देखने का सवाल है। जावेद अख्तर, उन्होंने इसी डिस्कम्फर्ट को कुछ साल पहले एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल में बदल दिया था।
1: आज अगर आप किसी नौजवान से मिलते हैं, लड़के या लड़की से, जो परफेक्शन ही बोल रहा हो, तो आपके सबकॉन्शियस में एक बात पैदा होती है कि किसी गरीब घराने का है, ये कोई हम्बल बैकग्राउंड से आया है, आपका अपनी लैंग्वेज के बारे में ये ओपिनियन हो गई है। अगर वो गलत हिंदी बोलता है तो एक बैकग्राउंड इसका अच्छा होगा। ये बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी रूट्स पे इतनी शर्मिंदा हो, कौन सी लैंग्वेज की हम परवाह कर रहे हैं, हमारी तो भाषाएं जो है सिमट रही है सारी की सारी। वो एक दिन थे जब आप उर्दू का गम करते थे, अब तो आप हर हिंदुस्तानी जबान का गम कीजिए, हमारी वोकेबुलरी सिमट गई है, हम बिना अंग्रेजी के 15 वर्ड इस्तेमाल किए हम बात नहीं कर पाते हैं।
0: जावेद साहब की बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, बात ये है कि दुनिया के सामने मॉडर्न दिखने के लिए क्या हम अपनी ही जड़ों को अनुकूल समझने लगे हैं। सिनेमा दुनिया से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन अपनी पहचान छोड़कर ग्लोबल बनना शायद प्रोग्रेस नहीं, एमनीजिया है। और इसलिए कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम कहां से आए हैं। ओम शांति ओम से सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल का वो टाइमलेस एहसास, कंपोज्ड बाय द मैवरिक्स विशाल शेखर, मैं अगर कहूं रिटन बाय जावेद साहब। Thank you for making us rewind to our thoughts. This is my rewind track of the week.
2: Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार पता है एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची इट्स हॉट। अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
7: खट खट, अगर कर,
8: अगर कर हू,
7: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
8: खट खट, हु दैट?
9: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 15.

अरिजीत की आवाज को धीरे धीरे गुडबाय कहने का दर्द अपनी जगह है, लेकिन इसी वक्त जिंदगी ने एक छोटा सा सरप्राइज भी दिया है। कभी कभी बचपन किसी फोटोग्राफ में नहीं मिलता, एक आवाज में मिल जाता है।

बस ये दो लाइनें, और पता नहीं क्यों एकदम से वो घर याद आ जाता है, वो उमर जब गाने सुनने के लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं होती थी, वो कैसेट्स, वो सीडीज, वो टीवी पर आया गाना, वही साउंडट्रैक था। लकी अली को सुनते हुए हमने सिर्फ गाने नहीं सुने थे, हम बड़े हुए थे। और शायद इसलिए आज भी अगर कोई ओ सनम किसी हाउस पार्टी में गा देता है या किसी इंटीमेट कॉन्सर्ट में अचानक वो आवाज सुनाई देती है, तो हम गाने को जज नहीं करते, हम उस पल में लौट जाते हैं। इसलिए दृश्यम 3 के मेकर्स ने लकी अली से मुस्कुरा दो गवाया है, क्योंकि लकी अली जब गाते हैं ना तो कॉम्पोजिशन पीछे रह जाती है, लिरिक्स भी पीछे रह जाते हैं, सामने हम खड़े होते हैं अपनी ही पुरानी जिंदगी के सामने। और मुझे इस गाने को एनालाइज नहीं करना है यार, ना इसका म्यूजिक डाइसेक्ट करना है, ना लिरिक्स को मार्क्स देने हैं, बस एक बार फिर उस लड़के के साथ बैठना है जो कभी लकी अली को सुनता था, गुनगुनाता था, और उसे पता भी नहीं था कि वो दिन एक दिन याद आएगा। दृश्यम 3 से लकी अली का गाया मुस्कुरा दो, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
4: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
3: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू देयर,
5: हुम आर यू,
6: हुम आर यू, हू,
5: अरे हुम आर यू लुकिंग फॉर मैडम?
6: खट खट, हू देयर,
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi,
7: it's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
9: Number 12.

सांसों की माला। कुछ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो आपको किसी और वक्त में ले जाते हैं और उस सफर में सिर्फ मेलेडी नहीं होती, आवाज, इंस्ट्रूमेंट्स, रिदम, हर चीज मिलकर एक जमाना बनाती है। अब नेक्स्ट गाने को ही देखिए, तबाही, टॉक्सिक, 90s में सेट एक फिल्म, लेकिन उसका साउंड आज का है। तो फिर सवाल ये है कि फिल्म को उसके वक्त का बनाता क्या है? शायद संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई फिल्म मेकर इस सवाल का जवाब नहीं जानता।

इनकी धुन सुनते ही सिर्फ गाने याद नहीं आते, पूरी दुनिया याद आ जाती है। खामोशी में सन्नाटा भी सुर बन जाता है, देवदास में इंतजार ट्रेजेडी बन जाती है, बाजीराव मस्तानी में मोहब्बत बगावत बन जाती है। यही संजय लीला भंसाली का कमाल है। वो म्यूजिक से कैरेक्टर की फीलिंग नहीं, उसकी पूरी इनर वर्ल्ड दिखा देते हैं। कभी कभी लगता है वो फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो एक कॉम्पोजिशन कंडक्ट कर रहे होते हैं जो फिर एक फिल्म बन जाती है। लव एंड वॉर उनकी आने वाली फिल्म, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए इस बात का सबसे हॉन्टिंग एग्जाम्पल मेरे लिए देवदास का वो गाना है जहाँ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मोहब्बत मरने का नाम नहीं लेती। सिलसिला ये चाहत का, माय पिक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
2: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

3 साल तक रणबीर कपूर की एक फिल्म का इंतजार किया और अब अगले 3 महीनों में 2 फिल्में मिलने वाली हैं, रामायण एंड देन लव एंड वॉर। एक तरफ संजय लीला भंसाली रीयूनाइट्स विद रणबीर कपूर आफ्टर 19 इयर्स एंड दूसरी तरफ यू गॉट अ रीयूनियन दैट्स गॉट एवरीवन टॉकिंग, क्योंकि 21 साल बाद एक ऐसी जोड़ी लौट रही है जिसके गाने सिर्फ हिट नहीं थे, वो पूरी स्क्रीन इमेज बना रहे थे, इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया। 2005 में इसी कॉम्बिनेशन ने आशिक बनाया आपने दिया था और हिमेश ने इमरान के लिए जो म्यूजिक बनाया वो सटल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, इट वॉज ब्रूटली कमर्शियल, इट वॉज इन योर फेस और रिपीट पे चलने के लिए बना था।

इसके अलावा देयर वाज आल्सो आपकी कशिश इन द सेम एल्बम एंड देन वी गॉट अ बैंगर जो सिर्फ गाना नहीं था, उसने इमरान की स्क्रीन इमेज को एक म्यूजिकल आइडेंटिटी दी थी।

0: और फिर वक्त ने वही धुन दोबारा छेड़ दी। 21 साल बाद वही डायरेक्टर आदित्य दत्त, वही कंपोजर मिस्टर रेशमिया एंड वही इमरान हाशमी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पुरानी यादों की नहीं है, हिमेश खुद गा रहे हैं इमरान के लिए। अफसाना बनाया आपने, जैसे आशिक बनाया आपने ने इमरान को एक म्यूजिकल इमेज दी थी, वैसे ही अफसाना बनाया आपने उस केमिस्ट्री का नया चैप्टर लिखने आ रही है। तो क्या ये रियूनियन सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या फिर इमरान और हिमेश की वो पुरानी म्यूजिकल केमिस्ट्री अब भी कमाल करेगी। बाय द वे, हिमेश जी से एक और रियूनियन की कहानी भी सुनेंगे जो सूरज बड़जात्या के साथ उनकी हो रही है, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या इमरान हिमेश का ये कॉम्बो वो केमिस्ट्री रिपीट पे चला सकता है। दिस वन हैपेंस टू बी फ्रॉम गन मास्टर 69, ये है अफसाना बनाया आपने।
1: नंबर 9।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई है हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो,
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
5: नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

रातों में आना फ्रॉम द मूवी वाइब डायरेक्टेड बाय कुणाल खेमू। और पहले ही कह देता हूं आई लव कुणाल, आई थिंक ही इज अ सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर एंड डायरेक्टर। अनफॉर्चुनेटली वाइब वो ब्लॉकबस्टर नहीं बन पाई जो शायद वो बन सकती थी, लेकिन इस गाने को सुन के एक चीज बार बार खटक रही है कि यार फिल्म का पहला गाना एल्बम का सबसे अच्छा गाना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका काम कुछ और ही है। देखो पहला गाना फिल्म का हैंडशेक होता है, आप ऑडियंस को पहली बार उस दुनिया में मिलते हो, उन्हें बताना चाहते हो कि फिल्म किस मूड की है, इसका तापमान कैसा है और क्या इसके लिए थिएटर जाना इंटरेस्टिंग होगा। और देखो धुरंधर का एग्जाम्पल देते देते मैं तो थक गया हूं तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा कितने एग्जाम्पल्स हैं। रिमेंबर द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ ये जवानी है दीवानी, या जब बजरंगी भाईजान में हम पहली बार पवन से मिले थे,

चाहता है। इनमें से हर गाने ने एल्बम की पूरी कहानी नहीं सुनाई, बस इतना किया कि फिल्म की दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और फिल्म मेकर्स के लिए मेरी एक बहुत ही सिंपल सी नसीहत है, पहले गाने पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। उसे हिट होना है, कैची होना है, लेकिन सबसे जरूरी उसमें फिल्म की एक झलक होनी है। प्रीतम दा ने ये बखूबी किया इन अनदर फिल्म जिससे हमें उस दुनिया का एहसास हुआ। दैट फिल्म वॉज दिलवाले और उसका पहला गाना था गेरुआ। दिस वॉज ऑल अबाउट शाहरुख एंड काजोल वो मेकिंग अ रिटर्न टू द सिल्वर स्क्रीन। अरिजीत सिंह अंतरा मित्रा की आवाज में ये है मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कौन है?
7: स्टेन।
6: स्टेन कौन?
7: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
8: खट खट,
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 5.

0: कुछ फिल्म मेकर्स की दुनिया इतनी खास होती है कि उस दुनिया के लिए हिट गाना बनाना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। सूरज बड़जात्या की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ गाना सिर्फ कैची नहीं हो सकता, उसे सिचुएशन में ही रहना पड़ता है, कहानी के साथ चलना पड़ता है और फिर भी हिट होना पड़ता है। ये प्रेम मोलिया पिछले हफ्ते नंबर 9 पर डेब्यू हुआ था इसका, लेकिन इस हफ्ते इसने छलांग मारी है टू नंबर 5, तो प्रूफ तो कर दिया है। लेकिन हिमेश रेशमिया के लिए सूरज बड़जात्या के साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या?
1: मैं आर्ट के साथ थोड़ा सा कमर्शियली भी सोचता हूँ, और सूरज जी के साथ अपना म्यूजिक फिट करना उनकी पिक्चर में वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज वो अपनी सिचुएशन से नहीं हिलते। और मेरे लिए ये हो जाता है कि किसी भी तरह ऑडियो वैल्यू हो जाए, जो पहले बहुत सीमलेसली अगर आप देखें तो होता था, बिकॉज एक दायरा था जिसमें हम 3-4 लोग इंटरेक्ट करते थे, म्यूजिक बनाते थे और म्यूजिक को देखने का जो एक माहौल था बहुत बहुत क्लियर था, इस रेंज में सिंगर गाएगा। लेकिन आज बहुत चीज़ें बदल गई हैं, 7 लाख सिंगर्स हैं, 300 गाने रोज रिलीज होते हैं, उसमें एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक देना जो एक म्यूजिक डायरेक्टर का फर्ज होना चाहिए, कि अगर डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया है तो आप अपना काम उस शिद्दत से करो, बट उनके वर्ल्ड को चेंज मत करो, लेकिन अपना ऑडियो वैल्यू भी फॉलो करो। बिकॉज मुझे ऑलवेज ऐसा लगता है कि सिर्फ सिचुएशन को अगर एक म्यूजिक डायरेक्टर फॉलो करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो ग्रेट बात है, बट देन मेरे माइंडसेट से वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर है कि भाई सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन आपको लिया गया है क्योंकि आपको हिट गाने भी चाहिए। लेकिन सूरज जी के हम फैन भी हैं और एग्री भी करते हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा हिट गाना हो वो छोड़ देंगे, वो नहीं लेने वाले ऐसे कि मैं फिट कर लूं।
0: यानी फॉर्मूला सिंपल नहीं है, सूरज जी की दुनिया से बाहर भी नहीं जाना और उसके अंदर रहकर गाने को इतना बड़ा बनाना है कि वो दुनिया के बाहर भी सुना जाए। वाव, और शायद इसी बैलेंस का रिजल्ट है ये प्रेम मोलिया का नंबर 9 से नंबर 5 तक आना। फिर आता है एक ऐसा गाना जिसका कनेक्शन अपनी फिल्म से कम और 90s की यादों से ज्यादा है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया इज ऑन नंबर 4, और अब सरप्राइज सरप्राइज एंड आल्सो अ शॉक कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 गाना इस हफ्ते 2 स्पॉट्स नीचे है, किसने सोचा था, बट हियर इट इज ऑन नंबर 3, आवारापन 2 का एंड आल्सो आवारापन 1 का, तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर 3।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
4: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
5: टॉयलेट
4: हाँ,
5: स्कूल था, कंजर खाना खुला हुआ था,
4: दोनों.
3: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
9: 89.6 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
11: Number 2.
12: Fun.

वारूम, नंबर 3 से नंबर 2 पर इस हफ्ते। और शायद इस गाने की खूबसूरती इसी में है, यह आपको एक लव स्टोरी का एहसास तो देता है लेकिन उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। बाकी कहानी आप खुद लिखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुनाते, वो उसके लिए एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो महलों में गूंजती है, पर्दों के पीछे छुपती है, शीशों में टूटती है और कभी कभी जंग के बीच भी जिंदा रहती है। वो बुलंद इमारतें, वो भारी पर्दे, वो शीशे, वो झूमर, वो गहने और वो घोड़े स्क्रीन पर आते ही कहानी को एक और जमाने में ले जाते हैं। यही तो संजय लीला भंसाली की दुनिया है, एक ऐसा भव्य दृश्य संसार जहां हर फ्रेम अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन अब भंसाली साहब खुद कह रहे हैं, इस बार ना इमारतें होंगी, ना पर्दे होंगे, ना घोड़े होंगे। लव एंड वॉर, एक कंटेम्प्रेरी कहानी, विंटेज फ्रेम, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और बीच में रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। और यहीं से लव एंड वॉर का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जब भंसाली अपने पहचाने हुए महल, पर्दे, झूमर और घोड़ों को पीछे हटा देते हैं तो क्या बचता है? 3 एक्टर्स, उनके चेहरे, उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे के सामने उनकी मौजूदगी। यानी लव एंड वॉर में भंसाली साहब अपने भव्य विजुअल वर्ल्ड को दोहराने के बजाय एक्टिंग और एक्टर्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। लेकिन भंसाली साहब के लिए असली सवाल शायद कुछ और है, जब दुनिया का स्पेक्टिकल हटा दिया जाए, क्या 3 एक्टर्स खुद स्पेक्टिकल बन सकते हैं? क्या रणबीर, विकी और आलिया अपनी परफॉर्मेंस से वो स्केल पैदा कर सकते हैं जो पहले भंसाली साहब के मैग्नम ओपसेस ने क्रिएट किया था? और इसलिए लव एंड वॉर सिर्फ संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म नहीं लगती, ये उनका अपनी ही पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। भव्यता को फ्रेम से हटाकर उसे एक्टर्स के चेहरों और परफॉर्मेंसेस में ढूंढने का एक्सपेरिमेंट। और शायद बॉलीवुड का स्पेक्टिकल भी बदल रहा है, चीजें नई हो रही हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें फिर से नई लग रही हैं। इस हफ्ते एक बार फिर से चोटी पर, शिखर पर, धुरंधर का गहरा हुआ बाय अरिजीत सिंह एंड शाश्वत सचदेव, द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 यट अगेन। नंबर 1।

0: तेरा मेरा रिश्ता अब नंबर वन नहीं है, लेकिन कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो गाना उसकी जगह आया है वो अपने नाम की तरह वक्त के साथ और गहरा हुआ है। That was गहरा हुआ from धुरंधर once again on number one, लेकिन बस एक और हफ्ता, एक और सफर और बॉलीवुड की कहानी में कुछ नए पन्ने जुड़ गए। So until the next time we meet here on the Mirchi Top 20, this is your boy Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline.
3: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
2: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
3: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात जो दुनिया पे अब छोड़ रहा है अपनी नई छाप। यस, बात करो मैं हमारे कतर की, जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे जबरदस्त छलांग मिली है। यस, दुनिया भर में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट अगर देखा जाए तो हमारे कतर में आया है। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस पिलर में पूरा 49% का जंप, मतलब होटल्स, ट्रेवल और एक्सपीरियंस अब पहले से कहीं ज्यादा बजट फ्रेंडली हो गए हमारे कतर में। और उसके अलावा ओवरऑल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भी कतर ने 2024 के मुकाबले 6% की ग्रोथ हासिल की है। तो मतलब चाहिए आप सुख वाकिफ की चाय पीने या कतारा का कल्चर देखने, इनलैंड सी की सफारी पे, कतर घूमने के लिए पूरी दुनिया के लिए अफोर्डेबल हो गया। और मैं तो कह रहा हूँ ये वो टाइम है कि हम लकी हैं यार, हम यहाँ रहते हैं, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाएं और कतर की इस ग्रोथ का हिस्सा बन जाए। क्योंकि अब कतर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ये ऐलान कर दिया है कि जब बात ट्रेवल एंड टूरिज्म की आती है तो हम हबीबी सबका वेलकम करते हैं। वैसे मैं एक पंच लाइन बोलना चाहता हूँ कि ट्रेवल की दुनिया में अब हमने मचा दिया है गदर। हबीबी वेलकम एवरीवन टू कतर 89.6 मिर्ची वाने थॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं। आपका

0: मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
1: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया
0: जी।
1: कुकड़ों को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: खट खट।
4: Who that?
3: जाहिर।
4: जाहिर। जाहिर हूँ।
3: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
4: खट खट। Who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: पापा मम्मी परेशान हूँ अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने थोड़ी राहत दी है।
1: बस ये खबर उन पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है जो अपने बच्चों के लिए एडमिशन सीख कर रहे हैं लेकिन कतर में उनको सीट्स नहीं मिल रही हैं। तो हम आपको बता दें, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने एक एक्साइटिंग न्यू रिफॉर्म लाया है जहां पर वो अब कतर में लगभग 7,000 न्यू सीट्स 46 प्राइवेट स्कूल्स में एड करने जा रहे हैं। Yes, ये प्रोसेस को और सिंपल बनाएगा, काफी ज्यादा इजी हो जाएगा और गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को फ्लेक्सिबल इसीलिए बनाया कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो हर बच्चे को मिले और बेहतर शिक्षा का हक सबको है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 46 स्कूल्स में जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें लगभग 7,000 सीट 6,883 एग्जैक्ट नंबर है ये बढ़ा दी गई है। अब इससे क्या होगा, अब आपके बच्चे का एडमिशन होगा, आप आराम से अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो अब टेंशन भूल जाओ। अब उनके लिए उनके स्कूल बैग्स खरीदना शुरू कर दो, टिफिन लंच बॉक्स नए बॉटल सब दो, ताकि आपका बच्चा जब स्कूल जाए तो उसे अच्छी वाली फीलिंग आए। चलिए जी, 46 प्राइवेट स्कूल मोर देन 6,880 सीट्स, एंड ये बताता है कि एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए कतर में बड़ा स्टेप लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन द्वारा। थैंक यू सो मच मिनिस्ट्री को जिन्होंने उन पेरेंट्स की परेशानी को दूर किया जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान थे। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: यार जैसे अच्छे हीरे की परख जौहरी को होती है, अच्छे खाने की परख अच्छे शेफ को होती है, और मुझ जैसे लोगों की बात करिए तो हम तो सूंघ के पहुंच जाते हैं कि देसी घी में तलती कचौड़ी कहां मिल रही है। वैसे ही संगीत प्रेमी भी ना संगीत की महफिल से जुड़ जाते हैं, और एक ऐसी महफिल के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और ये म्यूजिकल नाइट्स लेकर आए हैं बंट्स कतर। यस, बंट्स कतर जो कि एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीसी अंडर द एजीज ऑफ एम्बेसी ऑफ इंडिया है, वो बंट्स कतर लेकर आ रहे हैं तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट विद कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा। वेल, ये कहां होने जा रहा है? डीपीएस ऑडिटोरियम में, ऑन 9th of October, फ्राइडे का दिन है। आपके लिए फ्राइडे की एक पार्टी बिल्कुल तैयार करिए। टाइमिंग्स है 4:30 ऑनवर्ड्स, एंड जैसे ही पहुंच जाएंगे आप वहां बैठ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है मामला। एंट्री बिल्कुल फ्री है, और यहां परफॉर्म करने वाली है सिंगर अनुराधा भट्ट, साथ ही साथ जसकरण सिंह एंड शोधन शेट्टी, ये सबके सब तो होंगे वहां पर। कुछ और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए दीपक होंगे, वामन होंगे, राजेश होंगे, राजगोपाल होंगे, एंड ढेर सारे कल्चरल प्रोग्राम। सो इफ यू वांट टू स्पेंड योर फ्राइडे विद अ म्यूजिकल थीम वाली नाइट, सो दिस इज वन सच इवनिंग, तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट, जो लेकर आए हमारे कतर में बंट्स कतर। एंड आई एम श्योर अगर आप संगीत के प्रेमी हैं तो इस महफिल का हिस्सा बन ही जाएंगे। तरंग 2026 म्यूजिकल नाइट बाय बंट्स कतर, एंड ये होगा 9th of October फ्राइडे के दिन, डीपीएस ऑडिटोरियम अलवखरा दोहा कतर में। 89.6 मिर्चीवन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अबे कौन है?
6: उत्तपा।
5: उत्तपा कौन?
6: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
5: खटखट हो दा।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

ये स्टार्टअप की दुनिया ना वैल्यू बढ़ा रही है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। और किसी से पूछो आज नहीं नया स्टार्टअप किया है, वेल कुल मिलाकर हमें लगता है कि नए बिजनेस वेंचर को ये स्टार्टअप वर्ड जरूर दे देगा, लेकिन डिजिटल की दुनिया में इसका इम्पैक्ट बहुत हाई है। और बात करें तो कतर के डिजिटल वर्ल्ड की एक अलग ही स्पीड तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमसे एक फिगर शेयर किया है जहां पर अराउंड 130 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं हमारे कतर में, एंड इनका टोटल रेवेन्यू कतरी रियाल 178 मिलियन है। और उससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने कैपिटल को 316 मिलियन से ज्यादा रेज किया। ये बता रहा है कि डिजिटल दुनिया में जब ये नए नए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंटर कर रहे हैं तो किस तेजी से ये स्टार्टअप में अपने इन्वेस्ट कर इसे ग्रोथ दिला रहे हैं और इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर 1485 न्यू लोकल जॉब्स भी इस दौरान क्रिएट की गई। डिजिटल इंक्यूबेशन सेंटर से लेकर तस्मु एक्सेलरेटर, स्केल नाउ और एसएमई गो डिजिटल जैसे इनिशिएटिव्स ने कतर के स्टार्टअप सीन को एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे दिया है। और उसका ही ये रिजल्ट है कि आप कतर में ये देख पा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है अराउंड 1078 एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिला है। और बस यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप भी एक स्टार्टअप तैयार कर लो। हम भी सोच रहे हैं चाय मस्का बन और चाय पिलाएंगे और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएंगे। डिजिटल मिर्ची थॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेता सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: इशांत।
5: इशांत कौन?
4: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बाद अब हम देने जा रहे हैं यानी कि कदर देने जा रहा है एक और प्लेनेट। मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि दुनिया को एक नया प्लेनेट दिखाएगा कतर दिसंबर में, क्योंकि कतर कैलेंडर लेकर आ रहे हैं बबल प्लेनेट एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। अब ये बबल प्लेनेट है क्या, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा ग्रैंड इवेंट है जो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस साल के एंड 6 दिसंबर को आने वाला है। यस, एंड इसकी टिकट्स आपको अक्टूबर से ही मिलेंगी। इस दुनिया के अलग से प्लैनेट में क्या क्या होगा, यहाँ पे लोगों को मिलने वाली है मल्टी सेंसरी इवेंट एंड 360 डिग्री प्रोजेक्शन, और इसके साथ ऑप्टिकल इल्यूजन की एक दुनिया जो आपको इस बबल प्लैनेट पे खोने नहीं देगी। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ, 6 दिसंबर से ये हमारे कतर में शुरू हो जाएगा। तो इस विंटर सीजन फैमिली के साथ ये नया एक्सपीरियंस लेंगे हम बबल प्लैनेट में, लेकिन उसके लिए टिकट्स तो बुक करनी पड़ेगी। तैयार हो जाइए, अक्टूबर में हाथों में मोबाइल होना चाहिए और टिकट बुकिंग का बस लिंक, उसके बाद दे धकाधक अपने बुक कर लेनी टिकट, ताकि हम दुनिया के इस नए प्लैनेट पे चलें और बच्चों को अपने इस ढेर सारी मस्ती भरे पल का यादगार लम्हा दें। लेकिन याद रखिएगा, बबल से हमको अपने बचपन का वो खेल याद आता है जब घर में सर्फ आता था और उससे मिला के हम लोग फूक फूक के बबल बनाने की कोशिश करते, तो इस चक्कर में मम्मी से कितना पीटते थे क्योंकि इतना सर्फ बर्बाद किया यार। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

इस 50 कंट्री रियाल की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। अरे 2 लाख कतरी रियाल जिता सकता है तुम्हें ये 50 कतरी रियाल, या फिर साल भर का पिज्जा फ्री खिला सकता है तुम्हारा ये 50 कतरी रियाल। यस, क्योंकि पापा जॉन सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 20th एनिवर्सरी इन कतर, और ऐसे में उन्होंने अनाउंस किया है 2 लाख कतरी रियाल तक का प्राइज मनी, जहां पर आपको स्पेंड करना है 50 कतरी रियाल उससे ज्यादा, एंड आपको मिलता है एक रैफल नंबर, एंड आप उस रैफल ड्रॉ में शामिल होते हो जहां पर आपके पास मौका है 200,000 कतरी रियाल जीतने का, एंड इसके अलावा पूरे साल भर का पिज्जा बिल्कुल फ्री। यस, आपको एकदम इंतजार नहीं करना है, पापा जोन्स आपको साल भर का पिज्जा दे रहा है। और पिछले दिनों मैंने पहले 5 विनर से मुलाकात भी की जिनको साल भर का पिज्जा मिला है। हमने कहा हम भी आपके दोस्त हैं, थोड़ा बहुत हमसे भी शेयर कर लो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन कीप ट्राइंग योर लक विद पापा जोन्स पिज्जा, जहां पर 50 कतरी रियाल या उससे ज्यादा स्पेंड करते ही आपके पास मौका है इस 2 लाख कतरी रियाल पर अपने दावे का, एंड या फिर साल भर का पिज्जा सब्सक्रिप्शन पा जाओ फ्री में। जी, मस्मोला गौरव ने बताया है, तो अगर आप जीत जाना तो थोड़ा हिस्सा हमारे पास ही पहुंचाना, एंड तब तक लिए बेटर इंग्रेडिएंट्स बेटर पिज्जा, कीप एंजॉयिंग पापा जॉन्स मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, poscabana, sacabana. Gambala. Murga, murga. La virgo a la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
4: हेलो ये हंसा से मेरी बात करा हो भाई।
5: हेलो क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ।
5: हाँ जी।
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी।
5: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी।
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी। आपको मालूम है आपने क्या किया है?
5: मैंने क्या किया
4: था? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है। बेवकूफी की बात कर रही है।
5: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे।
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार।
5: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम।
5: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई।
4: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप। आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
5: है, मत सुने। और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
4: होगा आपके कारण से। हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ। एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है। आप बहस करे जा रही है मेरे से।
5: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी।
5: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
5: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जे
5: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
1: it's hot.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
9: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफल कूपन।
8: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए।
9: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB।
8: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
10: खटखट,
11: हू देयर?
10: बनता
11: बनता हूँ।
10: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
11: खटखट, हू देयर?
2: Only on 89.6 Mirchi 1.
1: Mirchi,
2: it's hot.

0: आप भी कुछ कमिट करते हो लेकिन उसके बाद उस कमिटमेंट को भूल जाते हो, तो भाई कतर से सीखो अपना कमिटमेंट निभाना। जब बात सस्टेनेबिलिटी की आती है, कतर अपने इस पूरे के पूरे कमिटमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने अनाउंस किया है 6th रिसाइक्लिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कतर में 6th एंड 7th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, राफल्स दोहा में ये एक पूरा इवेंट हो रहा है जहां पर पूरी दुनिया को कतर दिखा रहा है कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिसाइकिल करके एक बेहतर कल कैसे बनाया जा रहा है। Yes, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्कूल के बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि आने वाली जनरेशन को यह पता लग जाए कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे अपनी लाइफस्टाइल में फिट किया जाए। एंड अगर बात करें तो यस, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज कर कतर एक बेहतरीन कल बना रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि अगर आपने कुछ कमिट किया है तो उस पर मेहनत कीजिए, काम कीजिए और वो सपना पूरा होगा। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव भी बस ऐसा ही सपना देख रहा है कि एक दिन हम भी बहुत बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन अब उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मिर्ची, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्तबॉल गौरव एंड इट्स टाइम फॉर अल फरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें तो आज आपको स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार मिलेगा 562 कतारी रियाल पर, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 2629 कतारी रियाल, पैम 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 5187 कतारी रियाल, पैम का 1 औंस गोल्ड लेडी बार मिलेगा 16033 पर एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज एट 59512 कतारी रियाल। ये थे राइट नाउ के पैम्प के अल फरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट। और इतना ही कहूंगा, अगर सैलरी आई है और आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आने वाले टाइम में मिले आपको अच्छे रिटर्न, तो गोल्ड प्राइजेस हैं थोड़े कम, अभी इन्वेस्ट कर दो, बाद में मिलेगा रिटर्न ही रिटर्न। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव के साथ अल फरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट मिर्ची इट शॉट।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: दवे
6: दवे कौन?
5: The way you love me, I हाय मर जावा।
6: खटखट, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi One. Mirchi, it's hot.

0: तैयारी ऐसी करो कि एग्जाम कभी भी हो फिकर हो ही ना। और जब दुनिया के बड़े मेजर स्पोर्टिंग इवेंट की बात आती है तो कतर इतना ज्यादा प्री प्रिपेयर्ड होता है कि वो कभी भी करा लो, कतर इज ऑल रेडी। एंड अब स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि जापान के बाद एशियन गेम्स हमारे दोहा में होने, एंड पहले एशियन गेम्स जो होने थे वो थे दोहा 2030, लेकिन कहा ही जा रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने प्रपोज किया है कि एशियन गेम्स को 2031 में कराया जाए, शिफ्ट कर दें, ताकि 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाइंग और प्रिपरेशन इवेंट की तरह ये जो काम है ना वो आसान हो जाएगा प्लेयर्स के लिए भी और सभी पार्टिसिपेटिंग नेशंस के लिए भी। तो कह सकते हैं कि ओलंपिक से ठीक पहले, एक साल पहले ये इवेंट कराया जाएगा, उसको मैचअप करने के लिए एक साल शिफ्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोहा 2030 एशियन गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सीईओ हैं अहमद अब्दुल्ला अल बुनैन, उन्होंने कहा है चाहे आप इवेंट 2030 में कराइए या 2031 में, दोहा पूरी तरह से तैयार है, स्पिरिट और एनर्जी बिल्कुल हाई रहेगी सर। और पूरी दुनिया ने देखा है कि हमने जब फीफा वर्ल्ड कप कराया तो क्या जोश क्या जुनून, फिर अरब कप कराया तो क्या जोश क्या जुनून, और कोई भी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट है बस हमारे कतर में ले आओ। फिलहाल तो हम तैयारियां करें 2027 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की, लेकिन उसके बाद हम सब जुट जाएंगे और एक साथ हर नेशन को चेयर करेंगे जब दोहा 2030 एशियन गेम्स दोहा 2031 में होगा तो भी। और जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आते हैं। मैं यार लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में यकीन करता था, और अगर मैंने चार चैप्टर पढ़े क्वेश्चंस उसमें से आ गए तो 75 out of 100, और अगर नहीं आए 55 out of 100। तैयारियां मैं ऐसी करता था, मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

Do you know? अरे हम भी सब जानते हैं, अगर आप ऐसा क्लेम करते हैं तो गलत करते हैं। हाँ जी, हमारे अंदर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि अरे आई नो एवरीथिंग, ये बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अपने कान जितने खुले रखेंगे, विचारों को जितना अंदर आने देंगे, उसी से आप और ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। कभी कभी मैं बहुत काम की बातें करता हूँ, मुझे पता है, एंड मेरे पापा भी मुझे यही समझाते हैं कि देखो अगर तुम्हें सब कुछ पता भी है तो किसी के सामने ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से उन्हें पता ही लग जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। इसीलिए कुछ बातें बड़ी बड़ी बोलनी नहीं चाहिए और आपके एक्शंस आपकी बातों को डिफाइन भी कर देते हैं। बस इसी उम्मीद से कि आपको मेरी ये बात समझ में आई और आने वाले टाइम में ऐसे ही एक्शन सूरज चाचू भी दिखला दे तो मजा आ जाए, जहां पर वो थोड़ी सी ठंडक को आने दें। और मुझे पूरी उम्मीद है मौसम बदलेगा दोस्त और अक्टूबर हमें बिल्कुल वैसे नहीं सताएगा जैसे जुलाई अगस्त सितंबर ने सताया। यहां पर थोड़ी सी राहत आएगी इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मौसम बेहतरीन आएगा, ताकि वीकेंड्स पर बीच पार्टीज, आउटिंग में बारबेक्यू, ये सब हो पाए। मस्त मौलो गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में यही मिर्ची पर। हवी तब तक ले मां सलामा मिर्ची थॉट। देखो दे

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग ही रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ।
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर। 89.5

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi sun rahe hain aap. Ab bari hai for the hottest pop music. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me. Instagram pe mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 hottest gaanon mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic. A special shout out all this and more. To se shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki with Gaana number 10. Sanju Rao की आवाज होने की कॉम्पोजिशन बैंगल्स 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद रोमांस इज स्टिल इन द एयर. रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन है. मुसाफिर कैफे से है ये गाना. गाने का नाम है दरमिया ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.
0: नंबर 10.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana sakka bana Ya bana Murga murga Naveed wala murga Mirchi murga
3: Hello
4: Hello haan ji boliye
3: Kya bolun ji aap boliye
4: Aap boliye na
3: Call aapne kiya aap boliye
4: Call maine kiya hai हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने क्या बोलो क्या हुआ
4: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
4: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: नींद में है क्या
4: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी
4: है आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
4: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
3: हेलो
4: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
4: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
4: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरी चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
3: चप्पल पता
4: ना कहाँ कहाँ से आ रहा है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
3: क्यों आराम कर दिया तुम
4: जीना बता रहा यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
4: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
5: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
7: Hello, shops. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
8: Office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ profit आएगा
7: Relative से advice लो तो कहते हैं
9: काम को time दो 25 घंटे काम करो dark circles होंगे तो future bright होगा
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो
10: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची टेक योर पार्टनर विद अस नाउ योर बिजनेस विल गो वाओ कॉल नाउ 7070-7687
0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi number

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: बंजारे दी आर्टिस्ट की आवाज में, एक गाने का नाम है बैरन, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले साई और भयंकर का गाना राधिमा ने एंट्री मारी ऑन गाना नंबर 7। और गाना नंबर 8 पर था फरक दी आर्टिस्ट का तारे।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 6 पर हमने सुना बैरन, जो कि हरियाणवी भाषा में है। कभी कभी गाना आपको लैंग्वेज आने की वजह से नहीं पसंद आता, इट्स जस्ट अबाउट द म्यूजिक। एंड काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। ये गाना दुनिया को एक मलयालम इंडिपेंडेंट सॉन्ग की तरह मिला। पिछले साल नवंबर में रिलीज हुआ था एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इस गाने के मेकर्स ने भी सोचा होगा दैट दिस सॉन्ग विल बिकम सच अ बिग हिट। सोशल मीडिया रील से क्रॉस ओवर होके दिस सॉन्ग बिकेम सो बिग दैट इस गाने में ऑफिशियल हिंदी रीमिक्स किया है श्रेया घोषाल ने। इफ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट कल्याणी का रीमिक्स एंड आई हैव टू एडमिट आई कैन नॉट स्टॉप लिसनिंग टू द सॉन्ग। ओरिजिनल गाना मलयालम में, लेकिन जो लिरिक्स हैं उसमें बेसिकली बात हो रही है एक लड़की की, उसकी स्माइल, डिम्पल्स, उसकी आंखें, इनक्रेडिबल एफ्रो R&B इन्फ्लुएंस्ड प्रोडक्शन एंड अ उबर मॉडर्न ग्रूव। एंड देन श्रेया घोषाल का हुक टेक्स दिस सॉन्ग टू अनदर लेवल। आई थिंक दैट्स द रीजन इस गाने में लैंग्वेज का कोई बैरियर है ही नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द बीट। अब श्रेया घोषाल की आवाज के साथ अर्जुन KDS रॉन एंड 54 का गाना कल्याणी is playing right next for you. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके इट्स अ गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: Blana, Indie Top 10, Kanika ke saath, on Mirchi, it's hot.
1: Mirchi Stories,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
3: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया.
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया. और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस.
0: मिर्ची, इट्स हॉट. Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
5: खट खट अकबर.
6: अकबर हु?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे.
6: खट खट हु दैट.
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: कृष्णा एंड धंधा न्योलीवाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका। 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। पॉप म्यूजिक इज डेफिनेटली हैविंग इट्स बूम शाका मोमेंट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है बिंदास आके हिट पे आप। गाना नंबर 5 पर हमने सुना कल्याणी। एक मलयालम गाने में श्रेया घोषाल ने अपना हिंदी रीमिक्स दिया है। द वर्ल्ड ऑफ पॉप म्यूजिक इज सो डाइवर्स दैट ये एक बॉक्स में आ ही नहीं सकता है। आप एक दिन क्लासिकल गा सकते हो, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक पॉप कोलैबोरेशन कर सकते हो, एन R&B सॉन्ग और अ फोक क्लासिकल। एक ही आर्टिस्ट ये हर तरह के म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड वो पॉप म्यूजिक उन्हें वो स्पेस देता है। एंड जब हम हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे सेलिब्रेटेड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इतना एक्सपेरिमेंटल होते देखते हैं इन पॉप म्यूजिक, ये विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। श्रेया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सर्टेन साउंड आ जाती है, फिल्म, बिग मेलोडीज, ऑर्केस्ट्रेशन, दैट अनमिस्टेकेबल वॉइस। वो वॉइस वही है बट शी हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद द सॉन्ग्स। फन फैक्ट, श्रेया घोषाल ने अपना पहला प्लेबैक गाना किया था विच वॉज बेरी पिया इन देवदास। उसको सुन के एवरीबडी वॉज लाइक, हु इज दिस गर्ल, हमने इसको अभी तक कैसे नहीं सुना है। एंड आज 2026 में शी इज रिलीज्ड अ सॉन्ग कॉल्ड बेरी पिया जो कि ओरिजिनल बेरी पिया से बिल्कुल अलग है। श्रेया घोषाल की आवाज वही है लेकिन प्रोडक्शन कंटेम्प्रेरी है। इंडियन क्लासिकल के टचेस हैं, सितार हैं, बट द रिदम इज टू अपबीट एंड वेरी मॉडर्न। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। स्पेशल शाउट आउट टू बेरी पिया, श्रेया घोषाल की आवाज में, अनुराग मिश्रा की कॉम्पोजिशन, आलोक रंजन अनुराग मिश्रा के लिरिक्स। बेरी पिया इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Ghana Indie Top 10. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Gana number 10 se gana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs of the week, it's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
3: हमारी कैसेट क्लासिक जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज
4: पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोनी.
3: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
4: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए.
3: गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल, बाबुल सुप्रियो की आवाज में. 2003 में ये गाना रिलीज हुआ था. सामी मरूफ की कॉम्पोजिशन, फैज अनवर के लिरिक्स एंड बाबुल सुप्रियो की वो वार्म फजी स्लाइटली ड्रीमी आवाज. इस गाने में एक बहुत ही सिंपल सी फीलिंग है. आप किसी को पसंद करते हो, शायद उसे पता भी नहीं है, एंड आप बस इमेजिन करते रहते हो कि कभी उसका दिल मुझ पर भी आए तो. एंड कुछ तो बात है, अक्टूबर के माहौल में हवा चल रही है, आप कहीं से घर लौट रहे हो, फोन में कोई मैसेज नहीं है, यू आर स्माइलिंग एनीवे बिकॉज दिमाग में वही इंसान है. आई डोंट नो अबाउट यू, अक्टूबर रियली मेक्स मी डिल्यूजनल. वो वार्म फजी फीलिंग आ जाती है, बटरफ्लाइज थोड़ी ज्यादा फील होती है. एंड दिस सॉन्ग बाय बाबुल Supriyo is the perfect soundtrack to my October evening. So, apne radio sets ki volume bada lijiye. Throwing back to our classics, Babul Supriyo ki awaaz mein, this is Sochta Hoon Uska Dil on a cassette classic this week. You're listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

कुछ तो बात है यार हवा में, पता नहीं क्यों ये पुराने गाने अचानक ज्यादा अच्छे लगने लग गए बाबुल सुप्रियो की आवाज में। दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो गाना जो आज भी आपको लगता है कि दिस इज द सॉन्ग मैन, हमसे आके शेयर करो। मैं और आशिका है माई साउंड प्रोड्यूसर, हम आपके रिकमेंडेशन को बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। यू माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक। मिट्टा अरोर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन 27 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद बादशाह की कॉम्पोजिशन है, इनका म्यूजिक शर्वी यादव, बादशाह का गाना।

भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot
1: Mirchi Fresh Maal
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि जो चीज ज्यादा मिल जाती है उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। सिंपल सप्लाई डिमांड वाला कर्व जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे भी अप्लाई होता है। नहीं
1: मिर्ची कैफे,
0: वेलकम वेलकम टू मिर्ची कैफे। मैं हूँ आपके साथ पारुल। शो शुरू हो गया है और अभी आपने सुना रब्बी शेरगिल की आवाज में ये अल्टीमेट गाना तेरे बिन फ्रॉम दिल्ली हाइट्स। क्यों मैंने ये बात की कि ज्यादा मिलने वाली चीजें एंड ऑल दैट, यू नो, क्योंकि जब ये गाना मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि किसी की कमी होना भी कितना इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की लाइफ में ज्यादा घुस रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो। It magically works, okay? Well, मैं भी इसलिए कभी कभी आती हूँ जिससे you know, distance बना रहे, importance बनी रहे। तो मिर्ची कैफे शो लेकर आपके लिए आ गई हूँ और अगला गाना आपके लिए एक magical लेकर आ रही हूँ from Coke Studio। विशाल ददलानी और सोनू कक्कड़ की आवाज में ये गाना है। This is a beautiful track। Millennials को तो पता है और boomers को भी पता है, पुराने वाली सारी generations को पता है कि बंदर का एक act होता था जिसमें एक मदारी होता था जो बंदर को खेल करवा रहा होता था और वो सब you know, in the circuses and even road sides पे होता था। लेकिन जो डिविनिटी के हिसाब से जो हम झमूरे हैं और हमारा मदारी बैठ के चला रहा है पूरी दुनिया, घुमा रहे हैं हमको इधर से उधर, इट्स ब्यूटिफुल यू नो। पर एक चीज इस गाने को सुनते सुनते जरूर सोचना, हाँ आपका मदारी कौन है? किसके कहने पर चल रहे हो? बॉस मत बोलना प्लीज। हाँ

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो विनीत जी।
1: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
1: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही हैं।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
1: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
1: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
1: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
1: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
1: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
1: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
1: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसे लगा आपको?
1: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
2: जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
1: अरे कॉफिन ऑफिन कर तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
1: अच्छा भैया आप बजाने वाले थे।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds. फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए।
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256GB।
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफेल लो और ड्राइव द ड्रीम।
7: खट खट,
8: कौन है?
7: अज्जू।
8: अज्जू कौन?
7: अज्जू ना आए बाल मां, सावन बीता जाए। होए
8: खट खट, हु दैट?
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: नैनो से सुन कौन हूँ मैं, है ना? ब्यूटीफुल लिरिक्स. सुना आपने गाना तू है फ्रॉम मोहन जुदारो, ए आर रहमान और सना मुद्दती की आवाज में.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. मैं आपको कभी कभी आके बताती हूँ ना कि अगर हम ये रोमांटिकली वाली फीलिंग को शिफ्ट करके थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से ये गाना देखें तो कैसा साउंड करेगा. सो यू नो व्हाइल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग मुझे लगा कि वो जो मम्मी के तीन शब्द है ना प्यार वाले, वो आई लव यू नहीं है, वो पता है क्या है? खाना खा लिया. आप किसी भी एज में हो, आप छोटे हो, बड़े हो जाओ, आपके भी बच्चे हो जाएं, उनके भी बच्चे, आई डोंट नो, पर मम्मी का जो ये सवाल है ना वो हमेशा रहता है. तो मुझे लगता है कि ये गाना ना तू है मेरा ये संसार सारा, मैं और मेरा प्यार सारा, विदाउट डिलुलू, विदाउट बनावट, सारा जो ओरिजिनल डेप्थ वाला प्यार है ना वो सिर्फ माँ से ही मिलता है. एंड यू नो एक स्टडी भी है जो ऐसा कहती है कि एवरीवन जब हम बड़े हो रहे होते हैं बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम अपने मम्मी या पापा में से लेते हैं ना लाइफ में, वो हमें आगे तक उस इंसान में चाहिए होते हैं जो हम अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं. जो मम्मियाँ होती है ना वो जो एक रेयर कैपेसिटी है ऑफ हर टू लव यू बियॉन्ड मेजर्स, टू लिसन टू यू, सच में दिल से सुनने वाला इंसान जो, तो वो ना हम अपनी पूरी लाइफ ढूंढते रहते हैं कि काश कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कभी कभी हमारे शब्दों को नहीं शायद हमारे चेहरे को भी सुन ले और पढ़ ले, है ना? और अगर ऐसा कोई शख्स मिल जाता है तो जो ये अगला गाना है ये उसी शख्स के लिए है. और अगर कोई ऐसा शख्स है आपकी जिंदगी में, इस गाने को सुनो, उसको याद करो और कॉल करके थैंक यू करो. ओके, अभी आती हूँ ब्रेक के बाद. सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. इट्स हॉट.
2: Yes,

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
7: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
5: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply. GWM ke Mirchi Recharge mein DMIS school mein bachchon ne kiya fun. Let's hear it from them.
8: It was the best. I like the magic show.
9: Magic show, and you?
8: It was very nice.
9: You liked it?
8: Yes.
9: We should come again?
8: Yes.
9: What's your name?
8: Ira.
9: And yours?
8: Anvita.
9: What was the best?
8: The magic show.
10: This recharge is so cool. Better than anything else.
11: Mirchi recharge.
12: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
13: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
14: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
13: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
14: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256GB।
13: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफल लो और ड्राइव द ड्रीम।
15: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
16: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
17: बार बार।
16: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
18: 89.6
19: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कितनी दूरी है। अब देखो तो हम पास हैं, लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है, सोचो कितनी दूरी है।
1: वो वाली मूवीज होती है ना जो आपको कुछ सोचने को मजबूर कर देती हैं, जो आपके अंदर वो वाला इमोशन भी छेड़ देती हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था। कुछ ऐसे गाने होते हैं, कुछ ऐसे लव्स होते हैं, दे हिट यू फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट। हाँ, ये एक ऐसी फिल्म थी गली बॉय, एंड जावेद साहब व्हाट अ राइटिंग। वो जब भी कुछ भी बोलते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते करते कभी कोई रील भी आ जाती है ना जावेद साहब की, आई एम माइंड ब्लोन यार, क्या राइटिंग है जावेद साहब की।
2: मिर्ची कैफे,
1: रणवीर सिंह की आवाज में आपने ये गाना सुना, लेट्स गिव इट अप टू रणवीर सिंह इज वेल यार। वो जिस किरदार में घुसते हैं ना भाई, बेहतरीन घुसते हैं। सो दिस सॉन्ग ऑन मिर्ची कैफे आपने अभी अभी सुना, मैं हूँ आपके साथ पारुल। दूरी से मुझे याद आया, बचपन का टाइम याद है आपको, जब हम बाहर जाने के लिए परमिशन मांगते थे अपने पेरेंट्स से कि अरे यार कहीं जाने नहीं दे रहे मम्मी पापा, कहीं तो जाने दो, हमें निकलने दो घर से। और अब बड़े होकर वो वक्त आता है कि अब हम बॉस से इजाजत मांग रहे हैं कि हमें घर जाने दो। सो यू नो लाइफ जस्ट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स। तो बेसिकली ना मुझे लगता है कभी कभी कि अडल्टिंग का मतलब खाली सैक्रिफाइसेस ही हो गया है क्या। पता नहीं, सुनो इस गाने को, मिलती हूँ अभी। सुन रहे हैं आप मिर्ची, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: इन आवर स्कूल टॉयलेट यूज्ड टू बी द प्लेस जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
4: स्कूल था, कंजर खाना खुला हुआ था,
3: दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा, खूब मिलेगा, खूब
8: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: काश मन को भी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता, यू नो, हाउ टू रेगुलेट इमोशंस। काश मन को पता होता कि इग्नोर करने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, फेस करना पड़ेगा, गुस्से को भी, खुशी को भी, गम को भी, सब चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा, अग्रेशन को भी। मुश्किल है यार, कोई सिखाता नहीं है ये सब ना।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। काश मन की लैंग्वेज हमें कोई बचपन में सिखा सके यार। लाइफ सिखाती है और सीखते सीखते हम इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर लगता है कि यार कितने साल, 30-40 years तो वेस्ट ही कर दिए यही समझने में कि किसी को खुश नहीं रखना है, खुद को खुश रखना है और उसमें भी इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है या वैल्यू करना है। बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं ना जो मन में चलते ही रहते हैं नॉनस्टॉप। एक रीसेंट सर्वे मैंने पढ़ा जिसमें वो कह रहे थे कि 80% ऑफ जो हमारे थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, एंड दिस इज अ ह्यूमन स्टडी डन इन सम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वर्ल्ड एक्चुअली। तो उन्हीं सब थॉट्स के लिए, अच्छे या बुरे, जो आपके दिमाग में, जहन में चलते रहते हैं, मंजीरे बजते रहते हैं मन में, आपके लिए 26 साल पुराना एक गाना निकाल के लाई हूँ फ्रॉम माई टाइम मशीन। द सिंगर इज शुभा मुद्गल और 2000 से मैं ये गाना लेकर आई हूँ। जब हम बोलते हैं ना 26 साल पहले तो ऐसा लगता है कि 1990s की बात हो रही है, बट माई डियर फ्रेंड 26 साल पहले 2000 था। सो यस, सुनो इस गाने को, साथ में आप इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ सकते हो paruls.world के नाम से। लेट्स कनेक्ट देयर, मुझे बताओ कि ये सारे गाने आपको कैसे लग रहे हैं, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो इस शो पे, टेल मी। ओके, सुनो इस गाने को, आई विल बी बैक। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: यही तो खराब आदत है हमारी, जो चीजें हम पे मेहरबान है वो हम कहाँ देखते हैं।
1: मिर्ची कैफे,
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। आपको पता है कितनी चीजें आज अलाइन हुई होंगी फॉर यू टू बी वेयर यू आर। किसी इंसान ने आज आपको किसी गाने को सुनते हुए याद किया होगा, नहीं पता। आपको पता है ऐसे कितने लोग हैं अभी आपकी जिंदगी में जिनको आप मिले ही नहीं हो, हु आर येट टू मीट यू, येट टू लव यू, नहीं पता आपको। आपको एक्चुअली नहीं पता कि हाउ मेनी टाइम्स लाइफ प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम समथिंग जो आपके लिए थी ही नहीं, इन वेज जो आपको पता ही नहीं चला था। सो इतनी सारी चीजें अलाइन होती है ना, तब हमारी जिंदगी बन रही होती है। एंड आई रियली बिलीव कि यूनिवर्स में एक ऐसी पावर है जो सब चला रही है और हमें नहीं पता। छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती जो हम तकलीफ लेके बैठ जाते हैं। तो आज के मेरे तीन शब्द आपके लिए हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। सच में यार, चिल, रिलैक्स। शायद अभी एंग्जाइटीज होंगी कुछ चीजों को लेकर, बट हो जाएगा सॉल्व। ये अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसके बारे में एक फन बात बताओ। आई नेवर न्यू कि शाहरुख खान के लिए भी कभी हरिहरन साहब ने प्लेबैक सिंगिंग की है। एंड आई गॉट टू नो जब मैंने ये गाना सुना, ये गाना हुआ यूं ही चला चल रही फ्रॉम स्वदेश, और एक और गाना आई लव माई इंडिया। तो इन सब गानों में हरिहरन साहब ने गाया है, मे बी इन पार्ट्स और फुल फ्लेजेडली फॉर शाहरुख खान। सुनो इस गाने को, आई एम श्योर ये सुनकर आपको लगेगा कि बड़े दिन बाद सुना ये गाना। एंड यू नो कहाँ ढूंढना है मुझे, parul.world इंस्टाग्राम पे ढूंढो। लेट्स कनेक्ट, लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana.
1: Rabbala.
0: Murga, murga. La vieja la murga.
1: Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198 3983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
8: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर।
9: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन।
8: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी दो लकी विनर्स के लिए।
9: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स 256GB।
8: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर। प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक। अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, राफेल लो और ड्राइव द ड्रीम।
10: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
11: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अगर आपने अपने दोस्तों के साथ सैया चैलेंज नहीं खेला है या फिर किसी को करते हुए नहीं सुना या देखा है तो आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ। आई थिंक सैया इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग सॉन्ग्स फॉर कैलाश खेर। नहीं, ब्यूटिफुल लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, और आपको पता है कैलाश खेर ने लिखा भी है और गाया भी है। अनबिलीवेबल लगता है मुझे यार, क्या बेहतरीन सॉन्ग है ये। और ना इस गाने को सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि जिस तरीके की पार्टनरशिप मुझे लगता है मेरे दादा दादी की मैंने देखी है ना, मैंने कहीं नहीं देखी यार। वो जो आपने एक पोस्टर देखा है, कहीं ना कहीं देखा होगा आई एम श्योर सोशल मीडिया पे, कि एक बेंच है जिसपे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और दूर उसी बेंच के कोने पे एक लेडी बैठी हुई है। दोनों ने अलट पलट मुंह कर रखा है, लेकिन छाता जो है वो उन्होंने, जो मेल है उन्होंने फीमेल के ऊपर लगा रखा है बिकॉज बारिश हो रही है। इट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स के गुस्से के पीछे भी प्यार छुपा रहता है। और ऐसा अगर सैया कोई मिल जाए जिंदगी में तो उसको कहने को मन करता है कि अगर तुम मेरे पास हो ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे इवैल्यूएट करोगे ना तो आपको लगेगा कि पेशेंस और एडजस्टमेंट दोनों साल दर साल करके कम होता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो एक्सपेक्टेशन का कीड़ा है ना, ये अगर आप खुद से ज्यादा लगाओ और खुद सोचो कि मुझे बदलना है सामने वाले के लिए, तो आई थिंक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सुनो इस गाने को, अभी आती हूँ ब्रेक के बाद। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट।
6: Who that?
5: अगर कर।
6: अगर कर हूँ।
5: अगर करना है तो कर।
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi, it's hot.

0: और उसका पूरा एल्बम और अमित त्रिवेदी, इन सब के बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी कम है।
1: मिर्ची कैफे।
0: गाना सुना आपने नयनतर से अभी अभी मिर्ची कैफे पर, मैं हूँ आपके साथ पारुल। लेकिन लिसन, आपने कभी किसी के साथ आई कांटेक्ट एक्सपीरियंस किया है? ओके, सो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स और डिफरेंट तरीके ऑफ आई कांटेक्ट्स। एक होता है वियर्ड आई कांटेक्ट व्हिच यू डोंट लाइक, एक होता है ऑकवर्ड आई कांटेक्ट, एक होता है ऑकवर्ड बट बटरफ्लाईश आई कांटेक्ट। तो अगर आपने ये महसूस किया है ना, तो उस आई कांटेक्ट में जो इधर से उधर नजर चुराते हुए आई कांटेक्ट हो रहा होता है, जो वापस देखने पर भी अगर वो इंसान आपको देखता हुआ मिले, तो जो अचानक से तितलियां लहराने लग जाती हैं आपके दिल में, ये वाला जो फेज होता है ना मोहब्बत का, भाई आई थिंक वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट। लेकिन मुझे लगता है कि अब वाली जो जनरेशन है ना, वो जिस तरीके से प्यार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, टॉकिंग स्टेज जो उनके चलते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत सारे सिचुएशनशिप ब्रेड क्रमिंग वाले स्टेजेस, जिन पहलुओं की तरफ मैं बात को ले जाना भी नहीं चाहती, ऑल दोज स्टेजेस, मुझे लगता है आई कॉन्टैक्ट स्टेज इज द बेस्ट स्टेज व्हिच एक्चुअली बूमर्स या मिलेनियल्स हैव एक्सपीरियंस्ड। जेन ज़ी, क्या आपने भी वो नैनो की बातचीत वाली स्टेज एक्सपीरियंस की है? प्लीज राइट टू मी। हाँ, व्हाट्सएप नंबर है हमारे स्टूडियो का 7045983983, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम paruls.world। आई रियली लाइक टू नो कि जेन ज़ी का क्या तरीका होता है वो वैसी बटरफ्लाई वाली फीलिंग एक्सपीरियंस करने का, हाँ विदाउट टचिंग वाला। ओके,

दैट एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट. अगला गाना जो मैं आपके लिए चला रही हूँ ना, शान की आवाज में ये गाना है फ्रॉम द फिल्म झनकार बीट्स, और ये गाना था बहुत ही इनिशियल विशाल शेखर की कॉम्पोजिशंस वाला गाना जो यू नो सबके दिल को बहुत छुआ था. सुनो इस गाने को, अभी आ रही हूँ वापस. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या मतलब होता है अट्रैक्शन, राइट? आजकल मुझे लगता है कि जितना अटेंशन हम दे पा रहे हैं किसी को, वही सिर्फ एकमात्र अट्रैक्शन का कारण बन सकता है, बिकॉज हमारा सारा अटेंशन तो पूरा वक्त हमारे गैजेट्स पे होता है, अपने फोन्स पर होता है, नहीं?
1: मिर्ची कैफे.
0: वेल, मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. और यहाँ से मेरा अब टाटा बाबाई करने का वक्त आ गया है. बट आई वांट टू टेल यू कि सबसे प्रीमियम इम्पोर्टेंट मोह फील कराने वाली हैबिट जो है आजकल, वो यही है कि अगर आप वाकई किसी की बात उसकी आंखों में आके डाल के सुन रहे हो और फिर याद रख रहे हो दोज माइन्यूट डिटेल्स जो वो इंसान आपको बताता है, और अगली बार जब वो बता रहा होता है तो आप उसको कहते हो कि हाँ हाँ ऑफकोर्स आई रिमेम्बर, तूने ये बताया था, और फिर आप उसी को उसी की बात याद दिलाते हो कि देख ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, आई रिमेम्बर. दैट यूज टू बी बेसिक इन आर चाइल्डहुड, हम लोगों की जो जिंदगी होती थी शुरुआत वाली, जहाँ पे गैजेट्स नहीं होते थे. ऑफकोर्स आजकल मुश्किल है यार, अटेंशन सारा गैजेट्स खा जाते हैं. पर उसके बाद भी अगर आप किसी से मोह फील कर रहे हो और उसको उतनी इंपॉर्टेंस और अटेंशन और वैल्यू दे पा रहे हो टू एनी ऑफ योर रिलेशनशिप, यू नो इट रियली मैटर्स एंड इट्स ब्यूटिफुल. तो आपके लिए जोरदार तालियां और एक छोटू सा हार्ट मेरी तरफ से, ऐसे कोरियन हार्ट बनाया हुआ है अभी मैंने व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू. करो यार ये सब छोटी छोटी चीजें ना, यही सारी जिंदगी में मैटर करती हैं. और एक और छोटी सी चीज बताऊं, अभी आपने जो गाना सुना वो है मुनारी ठाकुर की आवाज में, ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल आवाज. और अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ हर्षदीप कौर की आवाज में. दीज आर टू सुपर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फीमेल सिंगर्स वी हैव, बेहतरीन आवाजें दोनों की. अगला गाना भी आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगता होगा. इस गाने के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ. डू लेट मी नो कि आपको ये शो कैसा लगा और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो अगले एपिसोड में. फॉर टूडेज एपिसोड मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ, वैशाली, नीता एंड मोहिनी. ओके, मैंने अपनी ही हैंडराइटिंग में ऐसे लिखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, होता है ना आपके साथ भी. इन तीनों के गाने मैंने चलाए हैं आज के शो पे. अगर आपको भी कोई गाना सुनना है या किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो, यू कैन राइट टू मी. 7045983983 इज माय नंबर एंड paruls.world इज माय इंस्टाग्राम आईडी. लेट्स कनेक्ट. बहुत सारा ख्याल रखो अपना. ओके, सी यू सून. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
3: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और आंख फड़फड़ाना, हाथ में खुजली होना, ये तो कुछ ऐसे निशान है जिनको कहते हैं कि अरे दाई आंख फड़फड़ा रही है तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है, बाई आंख फड़फड़ा रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, दाया हाथ खुजला रहा है तो पैसा जाने वाला है, बाया हाथ खुजला रहा है तो पैसा आने वाला है। इन सारी बातों के परे एक शेर मुझे दिखा जो कि किसी चीज के आने के अंदेशे के बारे में था। शकीब जलाली साहब लिखते हैं कि आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, तितलियां मंडला रही हैं कांच के गुलदान पर। मतलब गुलदान अभी तो खाली है लेकिन उस पे तितलियां मंडलाना शुरू हो गई हैं। तो हो सकता है आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, तितलियां मंडला रही हैं कांच के गुलदान पर। ऑफ कोर्स ट्रस्ट अ शायर जिसको पैसे से मतलब नहीं है, फूलों से मतलब है कि नहीं। स्टेडियम टू मिर्ची आपका दाशी आपके साथ। इट्स हॉट

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
4: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
4: मैंने क्या किया था?
3: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
4: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
4: है, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
3: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
4: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: अबू सिद्रा मॉल में शॉपिंग करो और घर ले जाओ टोयोटा लैंड क्रूजर.
6: यस, बस 100 रियाल स्पेंड कीजिए और पाइए फ्री राफेल कूपन.
5: ग्रैंड प्राइज 2026 टोयोटा लैंड क्रूजर GXR, वो भी 2 लकी विनर्स के लिए.
6: और जीतने का चांस है QAR 1 लाख कैश प्राइजेस में से, प्लस 10 iPhone 18 Pro Max 256GB.
5: तो शॉपिंग करो, कूपन लो और बन जाओ लकी विनर. प्रमोशन वैलिड 1 अक्टूबर 2026 से 16 मार्च 2027 तक. अबू सिद्रा मॉल, स्पेंड करो, रैफल लो और ड्राइव द ड्रीम.
7: खट
8: Who that?
7: जस्सी.
8: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
7: जस्सी who has come, आंटी जी.
8: खट Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर से जो है मंजर भोपाली साहब। 1959 में इनका जन्म भोपाल में हुआ, जैसा कि इनके नाम से खुद ही पता चलता है और जैसा इनके नाम से इनके उपनाम से खुद ही पता चलता है, इनकी जो लिखाई है मंजर कशी सी है उसमें, मतलब एकदम सामने दिखा देते हैं लफ्जों से जो भी इनके जहन में बात चल रही होती है उसको। और इनका जो मेरा पसंदीदा शेर है आपको मैं सुनाता हूं, जमाने की सच्चाइयों के ऊपर शेर है। मंजर साहब लिखते हैं कि अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, हो गया है जिंदगी का तजर्बा थोड़ा बहुत। तजर्बा तो लगता ही है यार, पहले समझ नहीं आता था जब पिताजी कहते थे कि हमने बाल ऐसे ही नहीं सफेद करे, लेकिन अब 30-31 की उम्र में आके ऐसा महसूस होता है कि सच ही कह रहे थे। अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटे, हो गया है जिंदगी का तजर्बा थोड़ा बहुत। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
6: 89.6
0: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और देखिए, शायरी में ना लफ्जों का खेल यही होता है कि जो लफ्ज होता है उसके नीचे एक और मानी होता है। अब आप शेर सुने कि जब से मुंह को लग गई अख्तर मोहब्बत की शराब, बेपिए आठों पहर मदहोश रहना आ गया। अब यहां देखिए आप, शराब का मानी शराब नहीं है, मोहब्बत है। जब से मुंह को लग गई अख्तर मोहब्बत की शराब, बेपिए आठों पहर मदहोश रहना आ गया। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे हम सब की पसंदीदा जो गजल है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, उसका अगला शेर है कि उस मैं से नहीं मतलब, मैं मतलब अल्कोहल, उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है। मतलब यहां अल्कोहल से मतलब नहीं है जब कोई मैं बोल रहा है या फिर शराब बोल रहा है, उसके नीचे एक और तह में एक और मीनिंग है जो कि बड़ा बेहतरीन है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। स्टेडियम टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
3: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Bollywood Bollywood Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Mere bete aayenge, mere Karan Arjun aayenge.
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और अब आ गया है मिर्ची महफिल का मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा,
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: हाँ जी, आपका ताशी है आपके साथ और वक्त है ताशी अनप्लग्ड का। ये जो नगमा आज मैंने गाने की कोशिश करी है, ये राहुल देव बर्मन साहब, आरडी बर्मन साहब ने गुलजार के साथ बनाया और इसे गाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड इसको निभाने की एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से।

0: में कुछ।
1: बने रहिए और नगमों, किस्सों, गानों के लिए मिर्ची महफिल के साथ। आपका ताशी भी बैठा है आपके साथ इसी महफिल में। स्टे ट्यून्ड एंड इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है
0: सर? वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi Mehfil में आपका ताशी है आपके साथ और अपने भावनाओं को व्यक्त करने पे, अपने इमोशंस को दिखाने पे हमारे समाज में एक अजीब सा टैबू है. मतलब औरतों के लिए तो फिर भी सही है, लेकिन मर्दों के लिए तो बहुत ज्यादा. मुझे गालिब का वो शेर याद आता है कि दिल ही तो है ना संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों. दिल ही तो है ना संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों. रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों. और एक बड़ा ही खूबसूरत पंजाबी शेर मैंने सुना था, पढ़ा था, जो मेरे जहन में बार बार कौनता है और मुझे ये याद दिलाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत जरूरी है, वरना एक दिन वो खुद ही बाहर निकल आएंगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा. कहते हैं कि फिर की होया जे में रोया, फिर की होया जे में रोया, भरिया बर्तन डुल जांदा है. आय हाय हाय हाय हाय हाय, फिर की होया जे में रोया, भरिया बर्तन डुल जांदा है. Stay tuned to Mirchi Mehfil. आपका ताशी है आपके साथ. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Navid bala murga.
1: Mirchi, murga.
3: हेलो हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
3: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में है क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
3: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
4: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
4: हेलो
3: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा अभी
3: आप देखिए बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा
4: हूँ
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
4: क्यों आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट
6: अरे भाई गुस्सा मत कर इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और अब मिर्ची महफिल में मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर
1: कि आपको नजर किया जाए आज का किस्सा बशीर बद्र साहब की जानिब से। किस्से का नाम राहत के रंग। मऊनात भंजन में मुशायरा हो रहा था। बशीर बद्र साहब निजामत कर रहे थे। राहत इंदौरी जिनका रंग गहरा सावला सलोना सा था उनकी सरमस्ती का दौर था और माइक पर आते ही बोले, हजरात मैं कल से बहुत खुश हूं। दरअसल अपने रंग की वजह से शर्मिंदा शर्मिंदा रहता था, लेकिन बाबू जगजीवन राम नायब वजीर आजम की सदारत में मुशायरा पढ़ने का मौका मिला। उनके रंग को अगर आप जहन में रखें तो मैं खासा कबूल सूरत आदमी हूँ। बाबू जी को देखने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। बशीर बद्र ने कहा कि बाबू जी भी बहुत खुश हैं कि उनकी कौम में इतना अच्छा शायर पैदा हुआ है। बशीर बद्र साहब और राहत इंदौरी साहब दोनों हैं अपनी मिर्ची महफिल का कारवां आगे। आप सुन रहे हैं ताशी को इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। एक बार मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था, उसके बाद मैंने गांठ बांध ली कि दोस्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो नहीं पड़ना है, क्योंकि जिंदगी में बहुत चीजों में इंतजार है। आपको एक बड़ा आदमी बनने के लिए इंतजार करते रहना पड़ता है कि मतलब वक्त लगेगा, मेहनत करते रहो। आपको जिंदगी में सुकून पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि भाई साहब हम उस जगह पे पहुंचेंगे जब जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी, नहीं भी चलेगी तो कम से कम उस पर हम थोड़ा सा अपना हक चला पाएंगे, उसमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन प्यार में अगर इंतजार करना पड़ जाए, वो यार एक एक पल खटकता है। शेख जहूरुद्दीन हातिम साहब का एक बड़ा सटीक शेर है, लिखते हैं कि मुद्दत से ख्वाब में भी नहीं नींद का ख्याल, मुद्दत से ख्वाब में भी नहीं नींद का ख्याल, हैरत में हूं ये किसका मुझे इंतजार है। आय हाय हाय, अब बंदे को पता भी नहीं है कि इसका इंतजार है। कम से कम आपके साथ ये मामला तो फिट था कि मतलब गर्लफ्रेंड, बीवी, पति, बॉयफ्रेंड, मतलब वन ऑफ दीज वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ योर इंतजार, लेकिन साहब को पता भी नहीं है। मुद्दत से ख्वाब में भी नहीं नींद का ख्याल, हैरत में हूं ये किसका मुझे इंतजार है। आपको हुआ है कभी ऐसा इंतजार? अगर हाँ तो किसका इंतजार था वो? Were you able to discover that? बताइए मुझे मेरे Instagram मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। Stay tuned, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। It's hot.

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
4: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
3: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood bol dal, Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपका ताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर और दोस्त जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना मतलब जॉब अनसर्टेनिटी को लेकर लोगों की नौकरियां जा रही हैं बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं नौकरियों से डर है लोगों के अंदर कि न जाने कल को हमारा भी फरमान ना आ जाए है ना ऐसे दौर में मेरे ख्याल से थोड़ी जज्बे वाली शायरी भी बड़े फायदेमंद रहेगी और मैं ले आया हूं ऐसा ही एक शेर आपके लिए बशीर बद्र साहब की कलम से लिखते हैं कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा आई नो डरावना लगता है अनसर्टिनिटी किसको अच्छी लगती है ना किसी को नहीं डरावना होता है वो पल लेकिन उससे गुजर जाने में जो कला है उससे गुजर जाने में जो हुनर है आई डोंट थिंक और कहीं एग्जिस्ट करता है हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है, आपके रत और सटीक और उम्दा शेर है। लिखते हैं कि अब तेज हवा कितनी ही चले, अब तेज हवा कितनी ही चले, अब गर्म फजा कितनी ही रहे, अब तेज हवा कितनी ही चले, अब गर्म फजा कितनी ही रहे, सीने का जख्म चिराग बना, दामन की आग बहार हुई। आय हाय हाय हाय। नोबडी इज मोर डेंजरस देन यू। अगर आप जिंदगी के अप्स एंड डाउन से एडजस्ट होकर उसको जीना सीख लें और लगे रहना सीख लें, आपसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति नहीं होगा। अब तेज हवा कितनी ही चले, अब गर्म फजा कितनी ही रहे, सीने का जख्म चिराग बना, दामन की आग बहार हुई। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर
1: कि आपका ताशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लफ्ज से जो है जाहिद। अब जाहिद का लिटरल मानी होता है प्रीस्ट है ना, लेकिन जाहिद एक किरदार के तौर पर भी उर्दू शायरी में बड़ा इस्तेमाल करा गया है और जाहिद पे बहुत सारे तंज कसे गए हैं। अब आप देखें जाहिद से दाग दहलवी क्या कह रहे हैं। दाग दहलवी कहते हैं कि आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। अब देखें सबके अलग अलग रास्ते हैं, दाग दहलवी साहब ने अपना रास्ता बताया कि आशिकी से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। और शेख इब्राहिम ज़ोक का मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर है, कहते हैं कि जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, क्या डेढ़ चुल्लू पानी में ईमान बह गया। अरे भाई साहब, मतलब एक जमाने के शायर थे जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब खुलेआम थी चीजें, है ना, आराम से ये सब बातें करी जा सकती थी। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ, इट्स हॉट।
3: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमारा।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और हमारे घर के ठीक सामने ना एक दादाजी रहते हैं। दादाजी को मैं बड़े बरस से देख रहा हूँ। 2006 में मैं आया था इस घर में, तो लगा लीजिए कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं दादाजी को देख रहा हूँ। और दादाजी का सर्दियों के महीनों में एक शेड्यूल होता था। वो सुबह 10 बजे छत पे आते थे, बढ़िया अखबार लेके, चाय वाय लेके, बढ़िया धूप तापते थे और अमरूद खाते थे, संतरे खाते थे। अभी सर्दियों में उनका यही रूटीन रहता। धीरे धीरे वक्त बीता, 2006, 2007, 2018, 2019, 2025 आ गया। दादाजी के घर के चारों ओर जितने भी मकान थे सबने अपने मकान ऊंचे कर लिए, सबने तीसरे फ्लोर तक अपने मकान बनवा लिए। और अब जब मैं दादाजी को वहां बैठे हुए देखता हूं तो मुझे जावेद अख्तर साहब का वो शेर याद आता है। कहते हैं कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। आए हाय हाय हाय। मतलब शहर के जीवन का ये इतना बड़ा सत्य है ना दोस्त, क्या कहें अब। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
4: I don't have to mouth those.
5: Sorry bro, sorry.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
3: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
7: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मिर्ची महफिल और मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: लेकिन जाने से पहले, हाँ जी, आपका ताशी है आपके साथ और वक्त है ताशी अनप्लग्ड का। ये जो नगमा आज मैंने गाने की कोशिश करी है, ये राहुल देव बर्मन साहब, आरडी बर्मन साहब ने गुलजार के साथ बनाया और इसे गाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड इसको निभाने की एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से।
3: आपकी आंखों में कुछ

0: में कुछ।
1: अगर नगमा पसंद आया हो आपको तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल का आज का सफर यहीं तक था। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, फिर सब जाग जाते हैं और

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।